0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह जे लाइ। मुझे जिंदगी जो ही छोटी एल्बम आहे जेके आवाज़ टेलीविजन ऐं थर प्रोडक्शन पेश करे थी पई, तमामु घणो एहसानमंद शुक्रगुज़ार आहियां हुन दोस्तनि जो जेके अहिड़े हालात में वीचारा ख़ासि करे ॿाराड़ियुनि खां हिते आया आहिनि ऐं उहे दोस्त जेके कराची खां पंहिंजा घर छॾे हिते आया आहिनि। अलाह साईं असांजे सिंध ते रहम ऐं करम करे। जहिड़ो हाल आहे, हिन एल्बम जी सिलेक्शन जमा ख़ासि कैली थी आहे ऐं जेको म्यूज़िक आहे उहो उस्ताद शाहिद बजमी ॾिनो आहे पहिरियों दफ़ो। जहिड़ो हाल आहे, माण्हुनि खे त घणियूं शिकायतूं हूंदियूं आहिनि त सदाई दुख जा गीत हूंदा आहिनि, पर अलाह साईं ठाहियो अहिड़ो आहे त भई तोखे ॻाइणो इहो ई आहे। पर ॾुख बि इंसान जी ज़िंदगीअ जो हिसो आहे, तक़रीबन 80% माण्हुनि खे कंहिं न कंहिंजो ॾुखु हूंदो आहे।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8
2: ओजे पक्षी है परदेसी गाल मिड़ाई सागी अवा जदे बीमार हुयूं ऐ मौत जे बिस्तरे ते सुतल हुयूं उन वेल कहंजी का याद कहंजा के सूर वरी जीण जी का आस का तमन्ना कैखा का शिकायत कैखे को डोरापो
3: दिसो ना उहे किए जींदा जिन जा दिल वारा दोस्त देस छडे परदेस हल्या वे होजन
2: बिल्कुल
3: मुझे ख्याल में उहे परदेसी पखी प्या पुछाइंदा आई मु अगर यही सूर प्यारो आंदा
2: केड़ा

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इन खां अॻु अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो। ईरान आबन हरमूज़ खोलण, रचा थियल यूरेनियम ख़तम करण ऐं ॿियूं शर्तूं तस्लीम करण वारी सदर ट्रंप जे बयान खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परे तर्जुमान इस्माइल बकाई चवाए त अमेरिकी सदर जाली फतह जो तासुर ॾियण जी कोशिश करे रहियो आहे। माहिदे में अहिड़ी का बि ॻाल्हि शामिल नाहे जंहिंजो ज़िक्र ट्रंप करे पियो। ईरान एटमी प्रोग्राम या रचा थियल यूरेनियम खे मुकमल ख़तम करण ते को इतफ़ाक नाहे कयो ऐं नई अहिड़ी शिक माहिदे में शामिल आहे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम ते के बि ॻाल्हियूं न पाया कयूं। आबन हरमूज़ इंतज़ाम जो फ़ैसिलो ईरान ऐं ओमान कंदा।

अमेरिका ईरान जा 1 अरब डॉलर्स मालियत जा क्रिप्टो असासा जब्त करे छा अमेरिका के नाणे वाले वजीर स्कॉट पेंसिल नेशनल इकोनॉमिक फोरम के खिताब कदे चवाए तो यह कार्रवाई ईरान खिलाफ शुरू कल मुआशी मुहिम जो हिस्सों है आबदा हरबूज की नाकाबंदी खत्म करने बाबत सवाल जवाब बिन आने वाले वजीर चवण तो जो कुछ हटाया वो आहिस्ते आहिस्ते हटाया वो पे भेरो ईरान एटमिक प्रोग्राम से गाल राजो जाहिर किया है ओमान आबदा हरबूज से टैक्स न लगने की खातरी कराई है ईरान की मदद करण से ओमान से पाबंदी लगाई व्यू

वीरपुर माथे भरसा नौजवान जो मसूबा मां लाशत गुट दीमशाह जो रहवासी शफीक चनो काल शाम जो मसूबा जे आरडी 78 वट वेंजंदे लुड़ी वियो। नौजवान जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद बार से न वाले। तलहार भरसा मजदा वाटरू के चिभाटे मारे छो हैदराबाद बदीन रोड से वाटरू मथा मजदा चढ़ी पी हादसे सबब 36 वर्न जो गफूर बला मौत हो ड्राइवर फरार पुलिस मजदा के तहवील में वही छोड़ा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी FM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। अधिक मशवरे और राबते के लिए 0327 99

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जंगबंदी में वाधा बाबत फैसलो न कर सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। व्हाइट हाउस पारा चाहिए तो ईरान से मुआदो अमेरिकी मुफादन ट्रंप के शर्तों तहत ही मुमकिन है। इन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पहली नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया।

ईरानी परदेही वज़ीर जो ओमान जे हमन सब सां फोन ते राबितो। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकची एक्स ते पोस्ट में लिखो तो ओमान जे परदेही वज़ीर सां आबना हरबूज इंतज़ामन बाबति ॻाल्हियूं थियूं। आबना हरबूज बाबति ईरान ऐं ओमान जी पॉलिसी ख़ुदमुख़्तियार ज़िमेवार ऐं आलमी कानून जे उसूलनि मूजिबि आहे।

इब्राहिमी माहिर ते अफ़ाम वरन पयूं पाकिस्तान जो मौके पासे आहे जेसताईं 1967 खां अॻु जूं सरहदूं ऐं अलकुदस जी राजधानी सां फलस्तीन खे तस्लीम नथो कयो वञे तेसिताईं पाकिस्तान जे मौके में का बि लचक पैदा न थींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ राज़ी वॉशिंगटन में अमेरिकी परदेह वज़ीर मार्को रूबियो सां मुलाकात खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ राज़ी चयो त पाकिस्तान अमन जो महिमान आहे। 47 वरहनि बाद अमेरिका ईरान खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल खे आलमी सतह ते नई सुञाणप मिली। पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वई।

मेहर ने इंडस्ट्री फीडर के मेन लाइन जो तारू चोरी बिजली बंद चोर ग्रिड स्टेशन सामू बिजली के चैन थमन मां तारू चोरी कर वाया बिजली बंद होने सबब वाटर सप्लाई की फराहमी बंद थी वही राइस मिल्स बर्फ के कारखाने समेत बो कारोबार भी मुतासिर

जिला अस्पताल कराची में औरत के वॉशरूम में बाह जलन वाले वाकई की जांच के लिए कमेटी कायम। जांच टीम वाकई की जांच कर रिपोर्ट सेहत खाते सिंध के सेक्रेटरी के पेश कंदी। जिला अस्पताल में औरत पारा बार के वॉशरूम में जलन बाबत वीडियो वायरल थी हुई।

0: पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में टिनि मैचिस ते ॿधल वनडे सीरीज जी शुरूआति अॼु खां रावलपिंडी में थींदी। सीरीज जूं बाक़ी ॿ मैचिस लाहौर में खेॾी वेंदियूं। पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट जी तारीख़ में ही 1000वीं मैच हूंदी। आईसीसी बोर्ड जी मीटिंग भारतीय शहर अहमदाबाद में अॼु थी रही आहे। मीटिंग में टेस्ट चैंपियनशिप जे कानून बाबति ग़ौर वीचार कयो वेंदो। पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जा सरबराह ऑनलाइन शिरकत कंदा।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99

क्या बात है जनाब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों के जहनों में ये बात आ जाए कि जब आप मार्केट जाएं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है. अक्सर ये एक बात हमें बड़ा परेशान करती है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई आपने जो परचेज करना है प्रोडक्ट वो कौन सा होना चाहिए. तो जब बहुत ज्यादा वाली प्रोडक्ट आप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन आपकी दूर की जाएगी और आपको बताया जाएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, व्हाइट व्हाइट हो जाएंगे, साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के लिए मौजूद जो कि आप लोगों की खूबसूरती को मजीद जो है ना वो पाला पाला बनाने वाले. ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आज के टॉपिक की जाने बातें हैं. तो आज का टॉपिक आप लोगों से मैं क्या पूछना चाह रही हूँ वो भी जरा बता देते हैं. तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, क्या मुझे बताएं गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज पर गुस्सा आता है. ज्यादातर तो गर्मी का जब सीजन होता है तो गर्मी में वैसे दिमाग बड़ा गर्म लगा पड़ा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज पर गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी चीज जो कि हमें गुस्सा दिलाती है. तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तरीके कार नहीं पता तो जनाब क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिग्नल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888.

1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को आपने फॉलो कर लेना है ताकि आपको जब भी हमारा प्रोग्राम चले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप पेज को फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पेज को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप जैसे ही पेज को ऑन करते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग ये जान सके, ये पहचान सके कि इनकी खूबसूरती का राज क्या है। और अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट तो हमें बताइए कौन सा प्रोडक्ट आपने लगा लिया और आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं। ओके जी, मुझे आज आप बताएंगे कि गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज पर गुस्सा आता है, और इसके साथ साथ जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। 888-1 पर ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कीजिए साथ साथ।

0: ओके जी, हमारे साथ आदिल हुसैन हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं ठीक हूं, बताएं। और कहते हैं कि हम कब्रों पर पांव रखने से डरते हैं लेकिन किसी का दिल रोंदने तोड़ने और तन से तकलीफ देने से नहीं डरते। ये तो बिल्कुल आपने अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी। आपने गाना जो है ना वो बोला है, लगाने की कोशिश कर देंगे। और नूरी संतुनियो भाई हमारे साथ मौजूद है। नूरी संतुनियो भाई क्या कहते हैं फ्रॉम ओके जी? और वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी आमीन, सारे आमीन बोले। और ये अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है एरा तकड़ा नहीं थी नहीं। और अली डिनो शमरानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे ही। कहते हैं कि माँ जे शख्स जो मुंतजर हुआ से उनका अलावा मुख्य सबनी ईद मुबारक चयो आई लीडे यो भी जुल्म थवाला। इम्ताद अली पमर हमारे साथ सऊदी अरबिया से, आप हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई जान। और अशफा कहते हैं आई मिस यू, चलिए जी आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद किया जाता है। आदिल लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो इंसान को समझते हैं और समझाते भी हैं। हाँ ये तो वैसे सही बात है, वैसे वो लोग भी खूबसूरत हैं जो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि हेलो हाय की आयो सब अदा, तुम उदा खुश चाक चंगो भलो आई, यस माँ सफा मजे में चाक चंगो भलो ताम उदा की आयो। और अशफा कहते हैं सिदरा ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी फैमिली को, तमाम के भी दचू मुबारक हो जन। और हिदायतुल्लाह कहते हैं मुंतजर सॉन्ग सुनाइए जी, मैं लगाती हूँ मुंतजर गाना। शौकत बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम शौकत, कैसे हैं आप? चाचा खालिद कहते इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल हो जाऊं इन, हाँ जी बिल्कुल आ जाइए, सुना है कल यो लास्ट बार समझ में ना आया, मतलब शायरी लेके आप मुझे ख्याल में शायद चले मोहब्बतूं चाचा तवां जो प्रोग्राम दो पया। शौकत के दिन टॉपिक, अगर कोई गर्मी में पंखा या एसी बंद करे उसकी जान लेने को दिल करता है, अरे भाई जान। हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक बिजली पर गुस्सा आता है। चाचा खालिद कहते हैं अम्हा आया हो गर्मी में तो गुस्सो नथो वैसे ये टॉपिक आंसर, चलें ये अच्छी बात है वैसे। और निदिड़ी भी हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम प्यारी ओपा, ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल यू, मैं तो हूँ ही प्यारी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। किशोर भाई कहते हैं कि लाइट वारंटी है, नेटवर्क वारंटी गुस्सो इंदो आए, चलें चलें मुखे बुधायो तो गर्मी में तवां के केड़ी गाल ते गुस्सो इंदो आए, केड़ी शे ते गुस्सो इंदो आए। गर्मी में असा डिठो वने तो बाबा असांके हर टाइम हर शय ते गुस्सो इंदो आए, सो तां मूंखे ॿुधायो तव्हां जी छा पोज़ीशन आहे, ऐं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया त पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾींदा वञो, ज़िंदा आहियो इहो बि मूंखे ॿुधाईंदा हलो, ऐं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो पिया कोन इहो बि ॿुधायो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो पिया कोन इहो बि ॿुधायो, ऐं तव्हांजे एरिया में मिले थी कोन इहो बि त ॿुधायो नी, सभु कुझु ॿुधायो, सभु कुझु ख़बर हुजे मूंखे, सही आहे। सो ॿुधंदो रहो प्रोग्राम तव्हांजो असांजो साथ पूरे पूरे टे बजे ताईं आहे। सो तव्हां कॾहिं न वञिजो, टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, माज़ रहो हीअं वञो हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White-ish and the Skin Beauty Show is sponsored by White-ish Beauty Products and the Skin Beauty Products. लगा दी जाइए और प्यारे प्यारे होते जाइए।
1: GA FM 88 सिंध की आवाज। तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती, जिस
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह
1: रूहे राहत मिलन जो हां
0: 3 मिनटन ते

ओके जनाब, सो यहाँ पर जरा आप लोगों को बताया जाएगा White Ash Beauty Products के बारे में आप लोगों को बताते हूँ। तो White Ash Beauty Products में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो White Ash Beauty Products में आप लोगों को सबसे पहले तो White Ash Beauty क्रीम मिल रही है, और White Ash Beauty क्रीम के बाद आपको White Ash Beauty सोप मिल रहा है, उसके बाद आपको White Ash काना फेस वॉश मिल रहा है जो वाइटामिन सी से तैयार शुदा है, उसके बाद आपको वाइटामिन सी भरपूर जो है ना व्हाइट एज की लवली क्रीम मिल रही है। व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि वाइटामिन्स का बिल्कुल जी इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल ऐड किए गए, और इसके अलावा बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है ताकि आप लोगों के पास कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम भी होनी चाहिए। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से मुझे सारी बातें जो है ना वो इनकी अच्छी लगती है, क्योंकि इन्होंने हर तरह के इंसान के लिए जो ना वो प्रोडक्ट तैयार किया है। ऐसा नहीं कि जो लोग फेस वॉश लगाते वो बोलेंगे हमारे लिए क्या है, जो लोग साबुन लगाते वो बोलेंगे हमारे लिए क्या है, और जो लोग ब्यूटी क्रीम लगाते उनके लिए भी है, जो लोग फेयरनेस क्रीम लगाते उनके लिए भी है। भाई एक्नी वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा, एक्नी के लिए भी इन्होंने डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी क्रीम तैयार कर ली, जो कि ये ट्यूब है आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल सकता है। डॉक्टर पिंपल नाम से बस आप जाएंगे परचेज करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो डॉक्टर पिंपल का ये एंटी एक्नी ट्यूब है जो फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार शुदा है, आपके चेहरे के एक्नी के साथ फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको खत्म करता है, और आपके चेहरे के एक्नी जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। एक्नी हो, एक्नी के निशानात हो, दाग हो, धब्बे हो, या फिर आपके चेहरे पर जो जलने का निशान होता है, जो कट का निशान होता है, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाती हैं। आपकी स्किन जो है वो बेरोनक अगर हो चुकी है तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, क्योंकि जब आपके चेहरे पर दाने आ जाते हैं या फिर निशानात आपके चेहरे पर होते हैं तो यकीन जाने कि हमारी स्किन जो है ना वो चाहे कैसी भी हो, चाहे आपका रंग गोरा हो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भाई कोई कमी तो है, और वो कमी पूरी होगी जब आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब आप नाम लेकर तलब कीजिए, आपके चेहरे पर एक्नी है तो उनको खात्मा करने के लिए बिल्कुल आप इस ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे, ये ऑल स्किन टाइप के लिए डॉक्टर से तस्दीक शुदा ये ट्यूब ही आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ व्हाइट एज की लवली क्रीम का अगर जिक्र किया जाए तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ये भाई गर्मियों का एक ऐसा समझ लेंगे तोहफा है आप लोगों के लिए। गर्मियों का सीजन जब भी होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि ना सिर्फ हमारी खूबसूरती को बढ़ाए बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करे, आपके रंग की हिफाजत भी करे। जो कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, कोई काम करते हैं, आपकी जॉब है, तो भाई अगर आप बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी सांवली हो जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खूबसूरती को जो है ना वो महफूज कर सकें। तो आपके पास व्हाइट एज की लवली क्रीम मौजूद है जो कि जनाब रेडिएंट अल्ट्रा वाइटामिन से तैयार शुदा है, जिसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल मौजूद है, जैसे इसके अंदर वाइटामिन B3 मौजूद है, वाइटामिन ई मौजूद है, वाइटामिन सी मौजूद है, वाइटामिन डी मौजूद है। ये तमाम वाइटामिन आप लोगों को व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर मिल रहे हैं, और साथ में सनस्क्रीन भी एड की गई है। इतनी जबरदस्त इसकी जो है ना वो फॉर्म है, जब आप इस्तेमाल करती हैं आपको इतना जो ना मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे चिपचिपी सी कुछ फेयरनेस क्रीमें होती हैं हम लगा चुके होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये चिपचिपा सा फील हो रहा है चेहरे के ऊपर। गर्मी में जब पसीना निकलता है तो आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, लेकिन व्हाइट एज की लवली क्रीम जो है ना वो इतनी स्मूथ है, इतनी जो है ना वो प्यारी है कि जब आप अपनी स्किन पर लगाते हैं तो वो अंदर जज्ब हो जाती है, आपके चेहरे पर ऐसा शिमरी सा इफेक्ट आ जाता है, आप ग्लो करते हैं, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाती है और आप प्यारे दिखने लग जाते हैं। तो मेकअप की भी आपको लोड नहीं है, बस आप व्हाइट एज की लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसी के साथ साथ आप लोग दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। जो लोग फेयरनेस क्रीम लगाते हैं ना तो वो दिन में रात में कभी भी लगा सकते हैं। उसके अलावा व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना इसमें कोई भी एज लिमिट भी नहीं है, आप हर एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई इस्तेमाल करेगा भाई। जनाब लाजमी इस्तेमाल करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। पर्सनली मैं भी इस्तेमाल करती हूँ व्हाइट एज की लवली क्रीम, और जो लोग जाहिर सी बात है जो वर्किंग लोग होते हैं जिनको काम करना होता है, जो जॉब पर जाते हैं, तो अगर आप मेकअप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम तो लाजमन होनी चाहिए। तो लाजमी आप भी व्हाइट एज की लवली क्रीम ट्राई करके देखिएगा, वाइटामिन से तैयार की गई है और इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड किया गया है, तो क्या ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा आपकी स्किन के साथ साथ। लाजमी ट्राई करके देखिएगा और रिजल्ट कैसे मिल
है ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा. आपके एरिया में मिल रही है नहीं ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए. उसके साथ आपको व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मिल रहा है, फेस वॉश भी मिल रहा है, जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी स्किन भी हो जाए खूबसूरत, प्यारी, हसीन और दिलकश. इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं. आप कौन हमारे साथ मौजूद है बताते जा रहे हैं और कहां से आप हमारे साथ मौजूद है ये भी बताते जा रहे हैं. गाना लगा है बहुत ही प्यारा, आइए जरा गाना भी सुनते हैं और आपके साथ गपशप लगाते हैं क्योंकि आपके कॉमेंट्स मैसेजेस जमा होते जा रहे हैं.

ओके जी, यहाँ पर उदास उदास लड़की है वैसे ये हमारी प्यारी निदली, हमारे साथ नाटो की प्रोग्राम है और कहती है टॉपिक हर बात पर गुस्सा आता है, घर वालों को बोलती हूँ पूरी गर्मी में मुझसे जरा बात ना करो। ऐसा वैसे हो सकता है। अच्छा दर्दी दिल भी हमारे साथ मौजूद है, प्यारी वालेकुम अस्सलाम, कैसी है, ठीक ठाक बताएं जरा, वाइटेज प्योरी प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचे, आए आपकी सिटी में, नहीं लगा रही है, नहीं चाचा बिल्कुल तव्हां गानो ॿुधाए त तव्हांजो गानो हलाईंदासीं, साॾे वेंदासीं भला तव्हांजो गानो न हलाईंदासीं त। अशफाक कहती टॉपिक मूंखे हुन ॻाल्हि ते तमामु घणो गुस्सो ईंदो आहे, उहा सिर्फ़ मूंखे ख़बर आहे। चलो न ॿुधाईंदा, ठीकु आहे। अजय किशोर भाई कहते हैं गुस्सो हर इंसान के इंदो आ, पर केंजो गुस्सो सुठो त केंजो बिल्कुल खराब हुंदो आ, गुस्सो वरे सुठो कि हुंदो आ, गुस्सो तो खराब ही हुंदो आ। सनोला ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। नूरे संतनियो भाई कहते हैं टॉपिक अभी मुझे गुस्सा नहीं आता, सच्ची बता।

में जादू की बातें हो रही है और साथ साथ यहाँ पर जादू तो तब होगा जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती में जादू करने वाले हैं। अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, चाहे आप लड़के हो लड़कियां हो, सारे लोगों के लिए तैयार किए गए जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिनमें आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आ जाती है, अगर आप फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एश लवली क्रीम आ जाती है, अगर आप साबुन लगाते हैं तो आपके पास व्हाइट एश का ब्यूटी सोप मौजूद है, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो आपके पास व्हाइट एश का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है, और ऐसे ही बहुत सारे मजीद प्रोडक्ट जैसे कि भाई डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब भी मौजूद है, अगर आपके पास एक्नी है, एक्नी आके जान नहीं छोड़ रहे, तो डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब लगाइए जो कि आपके चेहरे की एक्नीज को खत्म कर देगा। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं, लाजमी ट्राई करके देखिए, आपको भी पता चले कि आपकी खूबसूरती कहाँ छुपी हुई थी।

अच्छा वासु भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, तमाम के बीते जो मुबारक हो, मुझे घूमण पया हुआ। अच्छा नेता कहती है लारकाना में तेज गर्मी की बारिश, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। सही है भाई, एंजॉय करे। अच्छा आदिल कहते हैं हम गुड बॉय हैं, हम गुस्सा नहीं करते अब किसी बात पर, बहुत अच्छा करते, ऐसे ही गुड बॉय बने रहे। अच्छा वासु भाई कहते हैं अदी सिडो जवाब जनी घर में नंढड़ा बार बोर्ड कंदा आहिनि तॾहिं गुस्सो ईंदो आहे।

हाँ जी, मान भी जाए अब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी खूबसूरती जो है वो और ज्यादा बढ़ती रहे. और खूबसूरती ना सिर्फ ऐसी वाली आपको मिलेगी जो भाई आप प्रोडक्ट लगाते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी, बल्कि अगर आप प्रोडक्ट लगाते हैं आप छोड़ देते हैं तब भी आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आएगी वो हमेशा बरकरार रहेगी. तो खूबसूरतियाँ जो है ना वो हर कोई हासिल करना चाहता है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़कियाँ हैं, अंकल हैं आंटियाँ हैं, सारे लोग ही इस्तेमाल करेंगे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए. तो अभी जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए. वैसे अभी नहीं जाइएगा, शाम के टाइम जाइएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है तो अपना ख्याल भी रखिए. शाम में जाइएगा जरा बाहर, मालूमात लीजिएगा अपने करीबी जनरल स्टोर पे, पूछिएगा जरा वाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं नहीं, और मिल रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहे तो डायल कीजिएगा 03-15-799-0595. अच्छा जी, ये खास के लिए भी हमारा शो सुन रहे हैं, ये खास के लिए आपको वेलकम करते हैं. अनवर भाई कहते हैं अदी मैंने भी फर्स्ट टाइम ईद कराची में की अपनी फैमिली के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह. जावेद अली खोसू हमें सुन रहे हैं, कहते ब्यूटीफुल शो, थैंक यू. अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब, कहते ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेट होस्टिंग में हमारे, थैंक यू सो मच सर, खुश आमदी. ओके जी, उसके अलावा अली अकबर बिरोही भाई हमारे शो सुन रहे हैं,

अच्छा किंग फजल हमारे साथ हैं, वेलकम करते किंग फजल आपको। आपके सारे दोस्त हमारे शो सुन रहे हैं क्वेटा पाकिस्तान से, वेलकम जी। वैसे किसको पिंक ड्रेस है, मुझे अभी तक नजर नहीं आया कोई पिंक ड्रेस में। चाचा खालिद कहते माँ व्हाइट एज का फेस वॉश यूज करना चाहता हूँ बट मिले कौन है तू बेटा सिद्रा, प्लीज आस्क योर। चले ठीक है मैं बोलूंगी। वैसे कराची में आप कहाँ पर रहते हैं एग्जैक्ट, आप जो है ना अपना एड्रेस मुझे बताइए। वैसे ऐसे बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स कौन से हैं ताकि हम वहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल करा सकें। ठीक है कराची में भी मिलनी चाहिए ताकि जितने भी कराची वाले लोग हमें सुनते हैं तो वो वहाँ से जाकर परचेज कर सकें।

हाँ जी, मान जाइए आप भी कि आप सारे लोगों ने इस्तेमाल करना है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स है बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर सीजन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और हर कोई इस्तेमाल करे ऐसे प्रोडक्ट तो लाजमी आप ट्राई करके देखिए, आपको मजे आ जाएंगे। ऐसे के साथ साथ टाइम होता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाने वाले और इसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं सरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगा दी जाइए, खूबसूरत होती जाइए।

दहशतगर्दी के मोड़ण के लिए कानून लागू कर इदारों का किरदार अहमियत जोगो है। डोहन के मोड़ने के लिए सिंध पुलिस बैन इदारों से गडजी कम कर रही है। वे वजीर बरादरी शाह जो नेशनल प्रेस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के डीएसपी की पासिंग आउट परेड के खिताब। वे वजीर जद अमन बहाल रखने के लिए सिंध पुलिस की बहादुरी अजम ए लगा पुख्तो है।

0: प्रेस मुकाबले में ॿारनि नौजवान जे वारसनि जो एतिजाज़। वारसनि जो चवणु आहे त नसीम टैक्सी हलाए बचड़नि जो पेट पालींदो हो, खेसि पुलिस जुड़तू मुक़ाबले में क़तलु कयो। भाजी वियल नौजवान जी ॼाणी रोईंदे एतिजाज़ कयो त पुलिस बाबा खे बेगुनाह क़तलु कयो आहे। वारसनि पारां जुड़तू मुक़ाबले में मुलविज़ अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वही है। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी हैं मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई फिजिक्स, रियाजी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS chemistry, BS biotechnology, BS environmental science, English Islamic studies, B.Ed 4 sala, MS education 2 sala, mustahiq shagirdyan lai scholarships bhi maujood, eligibility and deadline, ghat mein ghat 50% mark ho intermediate lazmi, umr ki had 35 saal, form jama karane ki aakhri tareekh 5 june 2026 tak batayi gayi hai, lihaza der na kareo, online apply kareo, www.apy.bnbw.edu.pk। खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओं जो शानदार ऐलान। हाने पंहिंजे बारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल, 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स, GBSN, GBSM आई 5 साल DPD, जने ते 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम, LHV, CMW, ICNA, ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सिस में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मञता, असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाखिला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156356420 ऐं 03008311207। गर्मी, थकावट या दिल जी बेचैनी महसूस कयो पिया? हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटियुनि मां तयार कयल अहिड़ो शरबत जेको तव्हां खे ॾे ताज़गी, सुकून ऐं हक़ीक़ी राहत। दिल जी धड़कन खे मुतवाज़न रखण, गर्मीअ जे असर खे घटाइण ऐं जिस्म खे तवानाई ॾियण लाइ शरबत रूहे राहत। रोज़ानो सिर्फ़ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। क़ीमत सिर्फ़ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत, मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नज़्द, लाला शहज़ादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 03026426176।
5: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहज़मी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासीर, ज़नाना बीमारनि समेत ॿियनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस: अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नज़्द PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड, सखर। राब्ते जे लाइ 03-22-08-2600 ऐं 03-33-71-433-11।
4: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
6: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
4: DHMS सिंध,
6: RHMP इस्लामाबाद,
4: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
6: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पत्र। پتھری،
4: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج،
6: کمر درد،
4: ارکن نسا،
6: جوڑوں کا درد،
4: ہیپاٹائٹس،
6: وزن کی کمی یا زیادتی،
4: بے اولادی،
6: گنج پن کا مکمل علاج
4: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان.
6: ٹائم
4: ہفتے سے جمعرات
6: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک.
4: آغا ہومیوپیتھک کلینک،
6: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر.
4: رابطے کے لیے
6: 03262200440.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی
7: سجی
2: سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی پسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 2:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे। इसी के साथ साथ आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद, आपकी मोहब्बत और समाधो और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताइए कि गर्मी में सबसे ज्यादा आपको किस चीज पर किस बात पर गुस्सा आता है, ये आप जरा मुझे बताइए। वैसे अगर गर्मी में हमसे या कोई आराम से प्यार से कोई अच्छी वाली भी बात कर रहा होता है तो बदले में हम में ना गुस्सा आ ही जाता है। ये गुस्से वाला जो सीजन, ऐसा गर्मी का सीजन ही इसे गुस्से वाला सीजन कहना चाहिए। हर कोई गुस्से में है जनाब। अगर आप कोई अच्छी भी बात करें फिर भी अगले सामने वाला इंसान जो ना वो आपको गुस्सा ही दिखा रहा है, तो ये चीज है वाकई मैंने देखी। इसीलिए मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि गर्मी में जब भी आप यानी कि देखा जाए तो कौन सी बातें कौन सी चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों को गुस्सा दिलाती हैं। तो जल्दी जल्दी से आप हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के एरिया में अवेलेबल होने चाहिए। ये एक बहुत एक जरूरी सी बात है और जरूरी सी एक चीज है जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं और उन्हीं डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों के अंदर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश भी लगाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी से तैयार शुदा है। और डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो है ना वो जनाब इतना जबरदस्त है, इसके अंदर सीरम ऐड किया गया है और सीरम जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है जिससे आपकी स्किन जो है ना वो रूखी सूखी नहीं रहती, आपकी स्किन क्लीन नजर आती है, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो ग्लो नजर आता है और आप चमकते रहते हैं। लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई बताएं जरा आजकल आप क्या इस्तेमाल करें। वैसे मुझे जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप लास्ट में ट्राई करके देखिएगा, शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं आप ट्राई कीजिए। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए। और ये नंबर आप डायल करके महर इरफान सियाल साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मजीद उनसे जो है ना वो मालूमात ले सकते हैं कि कहाँ पर अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट, आप कहाँ से जाकर परचेज कर रहे या फिर आप परचेज करने वाले हैं। तो लाजमी आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा और इसके साथ जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश ये भी आप अवेलेबल कराइएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दी चलूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीड्स से तैयार की गई है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ इसके अंदर जो है ना वो इतने जबरदस्त क्वालिटी की चीजें ऐड की गई है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो वो खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो ग्लोइंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है, स्मूथ बन जाती है, सिल्की बन जाती है और सॉफ्ट भी बन जाती है। इसी के साथ साथ सिर्फ आप दो रातें इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो अपना असर दिखाने में स्टार्ट हो जाती है। तो दो रातें सिर्फ आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और साथ में डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे जो कि ये दोनों चीजें आपके चेहरे पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लाती है। और दोनों चीजें जब आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को महसूस होता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा लगाइए, अच्छे अच्छे दिखिए, खूबसूरत रहिए और साथ साथ अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और ट्राई करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जी, और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। और साथ साथ मैंने जो आप लोगों से सवाल पूछा है वो आप जरा फॉलो करते जाइए, टॉपिक के ऊपर बात करते रहिए और बताइए आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। और उसके अलावा आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल जी आपके साथ बातें की जाएंगी। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पैनल पर इकट्ठा हो चुके हैं तो पैनल की जाने पा जाते हैं।

आतिफ असलम का सॉन्ग सुनाए रफ्ता रफ्ता ओ सनम सलाम टू ऑल. ओके जी ओके आपका गाना लगाते मीर अल्लाह दिनो खान टालपुर हमारे साथ है. आपका शो वेरी वेरी नाइस है. सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहते हैं आपको भी. ये मौजूद है हमारे साथ आप ही जान आई एम फादली लाशारी. टॉपिक जवाब जब मैं सोया हुआ हूँ और चलते चलते पंखा बंद हो जाए मैं नींद से उठ जाऊँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. ये तो भाई एक ऐसा गुस्सा है जो हर किसी को आता है. और इरम कहती है आप अभी तक गोश्त खा रही हैं या बेजार हो गई हैं? भाई हमारे घर में ना थोड़ा थोड़ा करके बंद है ताकि कुछ दिन चल जाए और लोग बेजार भी ना हो. और ये हमारे साथ है जी फहाद डहरी सऊद डहरी फ्रॉम नवाबशाह. सलाम अदी खुश आयो जी जी तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो. ऐं शो तव्हां चयो आहे भलो आसो तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया.

क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना आप सुन रहे हैं और साथ साथ आप ट्राई कर रहे हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अपने करीबी जनरल स्टोर से जाइए, लाजमी मालूमात लीजिए और उनको बताइए कि आप जो है ना अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश। अगर नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे अवेलेबल किए जाएंगे, तो भाई आपको जो नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डायल कीजिए 03-15-799-0595। और बाबर अली के जेड हमारे साथ मौजूद है, सलाम सब सुनने वालों को, नाइस शो है रेडियो की क्वीन, आज गर्मी बहुत है फिर भी आपका शो सुन रहे हैं ये नहीं कह रहे फिर भी आप शो कर रही हैं ओके जी सुनिए सुनिए जरा। और ये नूर हसन तनियो भाई हैं फ्रॉम समंदर पार, अदी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जी आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी, डेडिकेटेड स्पेशली आप ईशा नूर हदीसा आसिम, एंड के बाद आपका मैसेज शायद मैसेज बैठ हो चुका है। और ये मकसूद मल्हा हमारे साथ है, हेलो सिद्रा मुस्कान, सिद्रा मुस्कान मैंने कराची, अच्छा उसके शायद आपका मैसेज जो है ये मिसिंग पार्ट है, तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। विलेज गुलाम कासिम सोलंगी हैं गोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आपको और आपकी सारी टीम को ईद मुबारक। बाजी सिद्रा हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज बड़ी मीठी है माशाल्लाह, आज हमें शेला गुल का गाना तो सुनाइएगा, और आपने डेडिकेट किया है फराज शहबाजी, आसिफ उस्ताद महर एंड सब सोलंगी ब्रदर्स को, थैंक यू जी आपका भी बहुत

अच्छा हिदायतु ना हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधो, टैलेंट कॾहिं बि पोड़ो नाहे थींदो. अच्छा मीपो खासी अब्दुल्ला महर है, शुएब महर, वालेकुम अस्सलाम. पाची व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और टॉपिक मुझे गर्मी में घर वालों पर गुस्सा आता है. पाची एवी बिलावजह गुस्सा आता है या फिर किसी बात पर आता है ये जरा बताइए मुझे. मुनव्वर मुगल हमारे साथ ही मीपो खासी कहते हैं आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर. जीते जी माँ बाप को. अच्छा शायद आपने एक पोइट्री लिखकर मुझे शेयर करी है लेकिन ये आपका मैसेज ना ये बीच में जो है ना थोड़ा सा कट हो गया है और पता नहीं क्यों आज बहुत से लोगों के जो मैसेजेस ना वो मिसिंग पार्ट मुझे मिल रहे हैं. यहाँ पर भी शायद नेटवर्क का मसला स्टार्ट हो चुका है. सो मुनव्वर मुगल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है. मीपो खासी आप हमारे शो सुन रहे हैं, आपको दिल से वेलकम करते हैं. और जी ये गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू तवहान जो शो वेरी नाइस आहे FMJ ऑल टीम के ऑल लिसनर्स के तवहान जी फैमिली के तवहान के ईद मुबारक हुजन, तवहान की ईद मुबारक हुजन. और ये हमारे साथ कश्यप, अस्सलाम वालेकुम, आपकी ऐसी हैं आप, गुड आफ्टरनून, ईद मुबारक से जो वेलकम दिल से सॉन्ग सुनाओ. ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद जा गाना ईद ते बुधा सी ना.

वैसे गर्मी है, काले जोड़े जो है ना वो आप कमी पहनिएगा गर्मी में, वैसे भी कारा जोड़ा न पाइन घुर्जी गर्मी वधे का महसूस थी ना। सुठा सुठा कलर पायो, लाइट कलर पायो, व्हाइट कलर पायो। ये तो राइम बन गई। ओके, काले जोड़े से जरा परहेज कीजिए। वैसे मुंह ही गानो लगाया हुआ खो टाइम थे, सही वालों गानों ना बुदोसी इन्हें जी करें।

जैसे मुमताज सुने के ये वाला गाना मुझे अच्छा लगता है. अच्छा रसूलाबाद का आबिद हुसैन चंबानी ही वालेकुम अस्सलाम अदी गर्मी में सबका घणो गुस्सो बरसा वेहण वारे ते ईंदो आहे सभिनी खे ईद मुबारक अल्लाह बरसा वेहण वारे ते गुस्सो ईंदो आहे छो भला और ये मौजूद है गुड आफ्टरनून सिस अब मेरी जब ना मेरी कॉल अटेंड नहीं होती तब मुझे गुस्सा आता है मीरपुर खास से आप हमारे साथ मौजूद है अपना नाम नहीं लिखा सो आपको वेलकम किया जाता है और ये है जी हमारे साथ हमारे इरम कहते से जाने जवाब है कंबर सिटी में दो या तीन दिन बिजली नहीं आती तो फिर मुझे गुस्सा आता है. वैसे मुझे गुस्सा कम आता है मैं इतनी गुस्से करने वाली लड़की नहीं हूँ. चलिए अच्छी बात है कम गुस्सा किया करें. और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी. और

अरे भाई गुस्सा ना करें ना करें गुस्सा. इमरान अली भाई आपको वेलकम करते हैं. वैसे बकरा जिंदाबाद. वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मुख्तलिफ गाने सुनाऊं. एक जैसे गाने नहीं सुनते ना अच्छी बात नहीं होती इसीलिए. और यहाँ पर जो है ना मैं देख रही हूँ तो टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाया जाए और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं. आप बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक. आपका हमारा साथ है. सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए. प्रोग्राम इज नाउ व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए.

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: GAFM 88
1: सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ मिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार माणन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया वो।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे खेल महा से और बेजान पन। अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450192। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
3: छात्रवास समर वेकेशंस के फ्रूटफुल बनाए चाहो था, छात्रवास सिर्फ बिन महीनन में न्यू स्किल्स सीखी पांजे मुस्तकबिल के वधिक बेहतर बनाए चाहो था, तो कोई परेशान छने जी का जरूरत ना है। ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 ईयर DIT कोर्स, 6 मंथ्स CIT कोर्स। तजुर्बे कार टीचर्स की निगरानी में जदीद आसान तरीकन सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सा गड सिखिया, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो, पहनजी समर वेकेशंस के कामयाबी सिखिया जो बेहतरीन मौके बनायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एडमिशंस ओपन नाउ। व्हाट्सएप 0300-311-3830, मोबाइल 0300-09-31207 एंड 0301-386-5090। एड्रेस लार टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 फीट रोड, भरसा IBA यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2, सखर। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लर्न स्किल्स, बिल्ड योर फ्यूचर।
4: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो टाइम सुबह 10 का शाम 6 वगे ताई। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे आचर से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त। रश का बचन नंबर वठन लाए 0327-84-60-746।
5: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी।
6: छो भला छा थियो तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
5: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भूख सही लगे थी, जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी। कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
6: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
5: हिकु? इहो कीअं?
6: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राबु आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
5: त पोइ मां छा कयां?
6: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़नि मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
5: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
6: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
6: DHMS सिंध,
2: RHMP इस्लामाबाद,
6: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
6: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
2: कमर दर्द,
6: अर्कुन निसा,
2: जोड़ों का दर्द,
6: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
6: बेऔलादी,
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
6: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
2: टाइम
6: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
6: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
2: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
6: राब्ते के लिए
2: 0326-22-00-440।
6: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराइण जी आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे। जी हाँ, साल 2026 जे लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं फिज़िक्स, रियाज़ी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, BS chemistry, BS biotechnology, BS environmental science, English, Islamic studies, B.Ed 4 sala, MS education 2 sala, mustahiq shagirdyan lai scholarships bhi maujood, eligibility and deadline, ghat mein ghat 50% mark ho intermediate lazmi, umr ki had 35 saal, form jama karane ki aakhri tareekh 5 june 2026 tak batayi gayi hai, lihaza der na kareo, online apply kareo, www.apy.bnbw.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कयो पिया? हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहिड़ो शरबत जेको तव्हां खे दे ताज़गी, सुकून ऐं हक़ीक़ी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाज़न रखण, गर्मीअ जे असर खे घटाइण ऐं जिस्म खे तवानाई ॾियण लाइ शरबत रूहे राहत। रोज़ानो सिर्फ़ हिकु गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। क़ीमत सिर्फ़ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत, मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड, फेज़ मोहम्मद रोड, गोश्त बाज़ार, ग़रीबाबाद, सखर। ख़मीस ऐं जुमो मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नज़्द, लाला शहज़ादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 0302-3626-176।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 7:30 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
7: तहजीब व सकाफत से सजी
8: सजी
7: सिंध की मेहमान नवाज धरती,
9: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GFM 88 की आवाज,
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सो कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताते जा रहे हैं. अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप डायल करते जा रहे हैं 03-15-799-0595. ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाए ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकें और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दे जाए.

ओके जी, अनवर भाई जान हमें सुन रहे हैं। अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ साथ हैं। नूरिसन तुनियो भाई लिखते हैं, पोइट्री रीड कीजिएगा, हम इतने भी नहीं बदले कि भूल जाएं अपनों को, जब कोई मंतजर ना हो तो राबता करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। वाह वाह क्या बात जी। खास के लिए कहते हैं सिद्रा आसान जो कॉमेंट पूरा नथा पढ़ो। नन्ना बाबा कॉमेंट बिल्कुल पूरा पढ़ंदासी, तव्हां जो मोहब्बत हुआ तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया असां। अनवर भाई कहते हैं जेको मिजाज खां अपोजिट गालाईंदो आहे त ॾाढो गुस्सो ईंदो आहे। या वैसे सही ॻाल्हि आहे। अच्छा ये चाचा खालिद कहते हैं, बेटा सिद्रा फरसाना पढ़िया मुझा SMS FB ते चवे थी ही प्रोडक्ट्स थी मिल लाए ठाया वया आहिन तवान ऑर्डर कयो हाणे मां छा कयां, मां ते फांसियाल साहब सां राबतो कयां पयो। न ही सभिनी जलाया आहिनि, तव्हां आंटी खे चओ आंटी तव्हां बि लॻायो ऐं अंटा तव्हां बि लॻायो, सभिनी जलाया आहिनि। सो मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था ऐं तव्हां बिल्कुलु राबतो कोन हिनखे ॿुधायो त तव्हांजे एरिया में न आहिनि अवेलेबल, जी अवेलेबल कराए सघनि। ठीकु आहे ओके जी। अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रही है जेकब आवाज से, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अयास अली खास के लिए हमें सुन रही है भाई झंडो मरी से, आपको भी ज्वाइन कर, अच्छा आपको भी वेलकम कर। इट्स सोनू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और ये जी विभा देवी हमारे साथ ही, हाय हेलो। और उसके अलावा है इमरान भट्ट, वालेकुम अस्सलाम। विभा देवी आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया।

ओके जी, बहुत ही ज्यादा प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि आतिफ असलम की आवाज में होने वाला है, और ये हम फहद भाईजान को डेडिकेट करेंगे.

सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप अच्छे से जानते हैं जनाब, डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए। ना मिलने की सूरत में डायल कीजिए 03-15-799-0595। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते चलें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार की गई है। सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है, चाहे वो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो, निशानात हो, स्किन डल हो चुकी है या फिर खराब हो चुकी है, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रहा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए, परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से पहले आपने डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कीजिए, ताकि ये दोनों चीजें जब आप साथ में इकट्ठा लगाएं तो आप लोगों को परफेक्ट वाला हुसन मिल जाए। तो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अच्छा, हजार खान जतोई भाई हमें सुन रहे हैं। हजार खान जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम, आयो ठीक ठाक? हिदायतुल्लाह, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते और वो कहती नहीं, वो अलग बात है। और वासु भाई, आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया।

राजा किशोर भाई लिखते हैं कि रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए तुम ही तुम हो। शायरिया या गानो बुद्धात। अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो मां तवां जो पुराणो फेन आया जेको कदें कदें नाए हलंदो उनके। चलो हाँ वैसे पुरानी चीजों आगे थोड़ी खराब थी वेंदियूं आहिनि पर तवां मुंहिंजा उहे फेन आयो जेके हमेशा नवा नवा रहंदा।

आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर जब कोई घर में आपके शो के टाइम काम कहता है ना, उस टाइम पूरा खून जल जाता है, काम नहीं करूंगा तो ताने देंगे। चलिए फिर आप उन्हें बोल दिया करें कि बस थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, जब तक ये शो चल रहा है खत्म हो जाए तो मैं आपके सारे काम करूंगा, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। अच्छा राशिद खोड़ो भी हमें सुन रही है, वेलकम करते हैं आपको भी। अच्छा सखावत अली राजपुर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम आपको। कहते हैं असांजी कमेंट कौन था पढ़ो, तव्हां कमेंट ही हाणे कयो आहे सखावत, तव्हां जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। ओके जी, ये बहुत ही प्यारा गाना हमने लगा लिया है, ये गाना आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये प्रोग्राम आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की खूबसूरती को क्या चाहिए, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो लास्ट में आप इस्तेमाल करके देखिए, ताकि आपकी खूबसूरती भी हो जाए मुकम्मल और आप भी हो जाए खूबसूरत।

अच्छा एक पोइट्री है, इस गाने के साथ जरा मेज जा रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना देती हूँ। मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है। मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है। नजरों से चूमती है, लफ्जों से ठुकराती है, खुद भी उलझी है मुझे भी उलझाती है। ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है, ना इस पार आती है ना उस पार जाती है, ना इस पार आती है ना उस पार जाती है, हक आशिकों का और हदें दोस्ती की निभाती है। किसी और का जिक्र करूं तो जलसी जाती है, मेरे हर हिस्से में अपना हिस्सा चाहती है। अक्सर पूछती है मुझसे तुम कौन हो मेरे, अक्सर पूछती है मुझसे तुम कौन हो मेरे, फिर कसम खाती तो कसम मेरी ही खाती है। मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है।

भाई गाना वाकई बहुत अच्छा है और मैं वो एक वाहिद इंसान हूँ शायद जिसने अब तक ये ड्रामा नहीं देखा. अच्छा आजकल पता नहीं क्यों मुझे ड्रामे जो है ना वो अच्छी नहीं लग रहे. और उसके अलावा ये हमारे साथ कंबर से हैं जी हमारी प्यारी लीला परी. लीला परी आपको वेलकम करते हैं. स्वीटी कहते हैं क्या हो गया है आपको, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह. मकसूद मलाह हमारे साथ है सिद्रा मुस्कान. मैंने कराची इस्लामाबाद लाहौर में प्रोग्राम सुने हैं लेकिन आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम की एक अलग दुनिया है. हाँ जी ये तो बात है. वैसे इरम हमारे साथ है. इरम आपका बहुत शुक्रिया जी आप हमारा शो सुन रही वोट मोहम्मद तैयब थे बुला थे सॉन्ग बुधराए जो तवागे सुबाने गाना बुधराई ना सी. और बाजी टॉपिक है गर्मी में हम गुस्सा नहीं करते क्योंकि ऐसी है जिंदगी जिंदाबाद चल रही है. इमरान अली बिरूई हमें सुन रहे बहुत शुक्रिया जी. चाचा खालिद आपका बहुत शुक्रिया गाना आपका लगाते हैं जी इस गाने की बात. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है. बाजी आपकी आवाज नाई से आपको नजरे बस से बचाए आमीन आमीन आमीन. और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी हमारे साथ है गोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी. बाजी सिद्रा छोटे बच्चों के गोड़ से गुस्सा आता है बाजी सिद्रा रिक्वेस्ट की है शीला गुल के गाने की. अरे भाई आपका शीला गुल का गाना तो मैं भूल चुकी. चलिए आपका जो शीला गुल का गाना है ना वो हम कल वाले प्रोग्राम में लाजमी लगा देंगे. मुझे याद होगा बस आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा मैं आपका गाना जो है ना वो सुना दूंगी आपको. ठीक है बहुत शुक्रिया. और आपने डेडिकेशन सेंड कर दी है जमादार वीरम सोलंगी एंड जमादार खुदा बख्श सोलंगी के नाम. ओके जी. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है बाजी. अच्छा बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं. लीला परी कहती है जब आपका शो सुनती हूँ तो दिल करता है. अच्छा काम काज छोड़कर आपके साथ बैठी रहूं और तस्वर कर लेती हूं कि आप हमारे साथ हैं. जी तस्वर कर लिया कर. आपने सलाम दिया है रुखसाना सीमा को. चलें जी बहुत शुक्रिया मेरी जाना खुश रहें. अच्छा फहद भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया. अच्छा दर्द दिल कहती हैं टॉपिक चंदा मुझे हर काम पर गुस्सा आता है जहां भी काम का नाम आए मुझे गुस्सा आ जाता है. भाई काम चोरी मत किया करे. अमी चंदिया लड़की जाता लड़की जात की नकरण गुर्जे सो औरत के कम करण गुर्जे. काम चोरी नहीं चलेगी. अली अकबर ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से आप हमारे शो सुन रहे बहुत शुक्रिया. सखावत तवां जो गानों सुबानी हलाईंदासीं ठीक आहे तव्हां सुभाणे असांखे जॉइन कजो 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधी सघो था.

ओके सो गानो ही प्रोग्राम जो लास्ट वारो मु लगायो थम हाँ चलो तुम से मुलाकात मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली है 1 बजे का 3 बजे तुम सो साथ है प्रोग्राम आए जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो तीन पहुंचाया वे पो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन सा सो तुम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन तुम लाजमी ट्राई करी दिसो इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वनो खूबसूरती की जको है ना वो तुम सब का अवल रखना कयो खूबसूरत रहो और खूबसूरती की हासिल कयो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल कंदा रहो और किथे का गलती थी हुए तो मां वहां माजरत कया थी कड़ी गाल मु चाही हुए जो तुटी न लगी हुए माजरत तुम लाई सरो ख्याल रखो सो मोकलानी ना बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वादा बाबत फैसलो न कर सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। व्हाइट हाउस पारा चवे तो ईरान सां वाइदो अमेरिकी मुफादाने ट्रंप के शर्त तहत ही मुमकिन है। इन अगु अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पहली नाकाबंदी खत्म करण जो ऐलान किया।

ट्रंप ॿिया मक़सद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमेरिका ईरान जी पहिरीं नाकामी ख़तम नाहे कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप जे यूटर्न ते रद्द अमल। मोहसिन रज़ाई चयो त अमेरिकी सदर सफारतकारी दौरान टियों भेरो धोखो ॾेई रहियो आहे। अमेरिका तरफ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रंप जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा नाहे।

एचआईवी बचाव मुहिम के लिए कल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पारां जिम्स अस्पताल के एचआईवी समेत मुख़्तलिफ़ पार्ट्स जो दौरो अस्पताल में दाखिल ॿारनि जी आयादत कई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चयो त कराची जे क़िस्म खां धारक न ॾींदासीं, पूरो निज़ाम ई ख़राब आहे, निज़ाम खे सुधारणो पवंदो। महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू हिकु इंजेक्शन ॿीहर ख़रीद नथा करे।

सदर अस्पताल कराची में औरत के वॉशरूम में बार जड़ने वाले वाकई की जांच के लिए कमेटी कायम। जांच टीम वाकई की जांच सूमर तीन मुकम्मल कर रिपोर्ट सेहत खाते सिंध के सेक्रेटरी के पेश कदी। जिला अस्पताल में औरत पारा बार के वॉशरूम में जड़ने बाबत वीडियो वायरल की हुई। में परत के मुबैना कातिल वरेरे के पुलिस से नव ढी गुजरण बावजूद गिरफ्तार न कर नव ढी अग वरेरे के पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल मेमण के मुबैना तौर टे गोलू हणी कतल कर पुलिस वंगारूपण की वाकई के इतफाकी करा दी केस भी दाखिल कर छो जरिए मुझे बासर वसूल के वारसन के मीडिया अचान का धमक दई रोके रहा है। इंडस्ट्री फीडर के मेन लाइन जो तारू चोरी बिजली बंद चोर गेट से सामू बिजली के चैन खंबन में तारू चोरी कर वाया बिजली बंद होने सब वाटर सप्लाई की फराहमी बंद की वही राइस मिल्स बर्फ के कारखानों समेत बो कारोबार मुतासर

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: GA FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फादी मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
2: छातवा समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाए चाहो था छातवा सिर्फ बिन महीने में न्यू स्किल्स सीखी पैंजे मुस्तकबिल के वधिक बेहतर बनाए चाहो था तो कोई परेशान छने जी का जरूरत नहीं ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 months समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 year DIT कोर्स 6 months CIT कोर्स तजुर्बे कार टीचर्स की निगरानी में जदीद ए आसान तरीकन सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सा गड सिख्या मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो आए पहंजी समर वेकेशंस के कामयाबी आए सिख्या जो बेहतरीन मौके बनायो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एडमिशंस ओपन नाउ व्हाट्सएप 0300311 3830 मोबाइल 0300093120 7 एंड 0301 3865 090 एड्रेस लार टावर फर्स्ट फ्लोर 100 feet रोड भरसा IBA यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 सखर ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्न स्किल्स बिल्ड योर फ्यूचर
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे खेल महासे और बेजानपन अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
4: शदीद गर्मी سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تا صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ائی ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودی کا پانی پیو ائی محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دے تعاون سا پیش کیو ویو
5: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: एच ब्यूटी क्रीम फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: यार मचा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
2: जो भला साथ हुआ तो खे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
1: यार एक मसलो हुजे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगला है, न भूख सही लगे थी, आईजे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना।
2: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
1: एक इहो की है?
2: हां तुझो मैं तो खराब आ, सा तो न बुधवा, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो, आई न ताकत मिलंदी।
1: तो पो मां छा कया?
2: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ए कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत कर छड़ी, बुख खुली वी खाधो सुठे नमूने हजम थी।

जंग जे खात्मे लाइ बावकार फ्रेमवर्क जे लाइ तयार आहियूं। वक़्तु अची वियो आहे त ॿी धुर अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जी कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोल। मसूद पिज़िशकियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो इख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे।

पुलिस मुकाबले में मारनि नौजवान जे वासनि जो एहतजाज। वासनि जो चवणु आहे त नसीम टैक्सी हलाए बचड़नि जो पेट पालींदो हो। पुलिस खेसि जुड़ितू मुक़ाबले में क़तलु कयो। मक़तूल नौजवान जी न्याणी रोईंदे एहतजाज कयो त पुलिस बाबा खे बेगुनाह क़तलु कयो। वासनि पारां मुलविज़ अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो।

जिन अस्पताल में औरत पारां वॉशरूम में ॿार ॼणण वारे वाक़िए जी जांच जे लाइ कमेटी क़ाइम, जांच टीम वाक़िए जी जांच सूमत ऐं मुकमल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत खे पेश कंदी। जिला अस्पताल में डॉक्टर जी मुबैना ग़फ़लत सबबि औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॼणण बाबति वीडियो वायरल थी हुई।

कुल में परत जो बयाना कातिल वरेरे के पुलिस गिरफ्तार न करे सकी नवंदी अग वरेरे के पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल मेमन के मुबैना तौर टे गोलियों हणी कतल कयो। पुलिस वंगारू बणजी वाके जो इतफाकी केस दाखिल कर छो हो। जरिए मुझे बासर मकूल के वारसन के धमकियों मीडिया अचान का भी रोके रहा है। लाड़कानो में हफ्तों अगु कबूतर पकड़े न देने वाले मामले में वेशियाने तशद जो निशानो बनायल नींगर चांडका अस्पताल में दम दी छो। 13 महीने के नींगर हसनैन रज़ा के 22 मई से बिरोही बिरादरी के मानून कबूतर पकड़े न देने तक मुबैना तौर सख्त तशद जो निशानो बनाया हो। चांडका अस्पताल में एक हफ्ते का दाखिल नींगर अज दम दी छो। नींगर के वालिद सईद भुट्टो मुतालबो किया तो पुट मथा वेशियानो तशद जवाबदार खिलाफ कतल केस दाखिल करें फौरी गिरफ्तार किया वे।

0: पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में टिनि मैचनि ते ॿुधल वनडे सीरीज जी पहिरीं मैच अॼु रावलपिंडी में खेॾी पई वञे। सीरीज जूं बाक़ी ॿ मैचिस लाहौर में खेॾियूं वेंदियूं। पाकिस्तान जी अॼोकी मैच वनडे क्रिकेट जी तारीख़ में 1000वीं मैच हूंदी।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: ईद ते सिर्फ चाहे नाहे ठहंदी, महफिलों सजंदियूं हैं। टपाल मेज़बान ईद उल अज़हा जो असली मेज़बान।
3: चेरी है कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम, आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी है कूलर्स, कूलर्स हर दम।
4: बॉडी रहे कंफर्टेबल, माइंड रहे फ्रेश। आपकी डेली आउटपुट डबल फॉर अ बेटर पाकिस्तान। पाकिस्तान्स फेवरेट ब्रांड बॉस।
5: क्लास ब्यूटी कलोन टैल्क, जिसे लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। क्लास ब्यूटी।
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: तंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां, हाने अमाजे पैंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश, गुर्दे की पथरी सोज, पुरानी खंघ, जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक, बरोज जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। अधिक मशवरे रबते के लिए 0327 99।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पातो थई।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान सा जेका भी डील थींदी सुठी हूंदी। सदर ट्रंप को भी मायदो अमेरिकी मुफादन के नजर में रखी कंदो। असां जंग लाइ अॻु खां वधीक तयार आहियूं। ईरान खे बि ख़बर आहे त खेन डील जे लाइ छा करणो आहे। अमेरिकी जंग वारे वज़ीर पीट हेक्सेथ जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। पीट हेक्सेथ चयो त ईरान कंहिं बि सूरत में हेठि में हथियार नथो रखी सघे। पाकिस्तान अमेरिका जो मुख़्तलिफ़ दोस्त आहे। शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल अमन ॻाल्हियुनि में शानदार किरदार अदा करे रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वाध बाबति फ़ैसिलो न करे सघियो। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे ख़तम। अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। व्हाइट हाउस पारां चयो त ईरान सां मुआदो अमेरिकी मुफ़ादन ऐं ट्रंप जे शर्तनि तहत ई मुमकिन आहे। इन खां अॻु अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी बहिरी नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो।

सदर ट्रंप बया मकसद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमेरिका ईरान की बहरी नाकामी खत्म ना कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप के यूटर्न से रद्द अमल। मोहसिन रज़ाई चाहे अमेरिकी सदर सिफारतकारी दौरान टों भेरों धोखो रही रो है। अमेरिका तरफा गाल में हद का मुतालबा क्या पा वन ट्रंप के अमल साबित कर छो तो गाल में संजीदा ना है।

जंग के खात्मे लाए बावकार फ्रेमवर्क के लिए तैयार आयु वक्त अची वो है अमल ए लफ्जन से पंजी नीयत साबित करें ईरानी सदर की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी से फोन से राबते दौरान गाल बोल मसूद पेजिशकियान चे तो ईरान ईमानदारी से गाल रस्त इख्तियार कर जरूरत है बी धुर आलमी जिम्मेवार की पासदारी करें

न पुलिस मुकाबले में मारन नौजवान के वारसन जो एहतजाज वारसन जो चवण है नसीम टैक्सी हलए बचन जो पेट पाली हो पुलिस खेस जुड़तू मुकाबले में कतल कर मस्तूल नौजवान की न्याणी रोईंदे एहतजाज कर पुलिस बाबा के बेगुनाह कतल कर वारसन पारा मुलविज अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो

कराची जी जिन अस्पताल में औरत पारा वॉशरूम में बाहर जाने वाले वाके की जांच के लिए कमेटी कायम जांच टीम वाके की जांच सूमर तक मुकम्मल कर रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत के पेश कदी जिला अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत सबब औरत पारा बार के वॉशरूम में जड़ने बाबत वीडियो वायरल की हुई।

में परत जे मोबाइल कातिल वडेरे के पुलिस गिरफ्तार न करे सकी नवंदी अग वडेरे जे पुट बिलाल सर की चौकीदार अजमल मेमन के मोबाइल तौर टे गोलियों हणी कतल कयो हो पुलिस वंगारू बणजी वाके जो इतफाकी केस दाखिल करे छो हो जरिए मुझे बासर मकतूल के वारसन के धमकियों दई मीडिया अचान का भी रोके रहा है लाड़कानो में हफ्तों अगु कबूतर पकड़े न देने वाले मामले ते वेश्याने तशद जो निशानो बनायल नींगर चांडका अस्पताल में दम लिछ रो 13 वरें जे नींगर हसनैन रज़ा के 22 मई ते बिरोही बिरादरी के माण्हुनि कबूतर पकड़े न देने तां मुबैना तौर सख्त तशद जो निशानो बनायो हो चांडका अस्पताल में एक हफ्ते का दाखिल नींगर अज दम लिछ रो नींगर के वालिद सईद भुट्टो मुतालबो कयो आहे त पुट मथां वेश्याणो तशद करण जवाबदारनि खिलाफ़ कतल केस दाखिल करे खेन फौरी गिरफ़्तार कयो वञे

0: ऐं पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में टिनि मैचेस ते ॿुधल वन डे सीरीज़ जी पहिरीं मैच अॼु रावलपिंडी में खेॾी पई वञे। सीरीज़ जूं बाक़ी ॿ मैचेस लाहौर में खेॾी वेंदियूं। पाकिस्तान जी अॼोकी मैच वन डे क्रिकेट जी तारीख़ में 1000वीं मैच हूंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तआवुन सां पेश कयो वियो।
3: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत सां टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: जो शहर पंहिंजो घर सकरन ऐं सकरन जो आवाज़
5: GFM 90.8।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
1: बे औलादी,
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
2: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
2: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
1: राब्ते के लिए
2: 03262200440।
3: It's 5:50.

0: लीगल कॉन्सिक्वेंसिस भी थी सघनि था. इन सां वाबस्त असां सां गॾु स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि. 10 ईयर्स खां वठी तकरीबन ई जेको आहे एडवोकेसी सां वाबस्त आहिनि, एज़ वेल एज़ लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में. ऐं तमामु सुठी हिननि वटि नॉलेज आहे अबाउट द लॉ, ऐं तमामु घणा हिन जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि रिटर्न क्वालिफाई थियल आहिनि. शहबाज़ साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज़.
1: थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम.
0: यस, लॉन्ग टाइम. सो शहबाज़ साहब, टॉपिक ते अचूं पिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अक्सर तव्हां ॾिठो आहे त अमानत में ख़यानत जेको आहे न अॼुकल्ह थोरो वधी वियो आहे, ऐं कीअं वॾी काई शइ अमानत रखाई पई वञे त हू त चए पियो ठीकु आहे यार, ही त भलाई थी वई जो मूं वटि अची वई, मूंखे यूज़ पई करणी पए, ऐं जंहिं अमानत रखाई आहे पोइ उहो जेको आहे त पियो रिकवर कंदो वधे. त इन ते अव्हां सभ खां पहिरियां असांजे जेको आहे व्यूअर्स खे इहो ॿुधायो त जेको इहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे, आहे छा हिन जो लीगल अगरि असां डेफिनेशन ॾिसूं.
1: डेफिनेशन ॾिसो जेके पाकिस्तान पीनल कोड में लिखियलु आहे, उहा लिखियलु आहे की वेन अ प्रॉपर्टी इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एंड दैट पर्सन इज़ यूज़िंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन पर्पस आर ही इज़ अ डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी आर यूज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी इलीगली गिविंग लॉस टू समवन एंड गेनिंग इलीगल गेन टू हिमसेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.

0: माना कंहिं माण्हू अमानत में कंहिंखे ॾिनी हुजे अमानत थो शइ त हिन जो ख़्यालु रखिजो ऐं उनखे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे ऐं उनजी the only movable property is being misused by jeke sa chona wa property that can be shifted from one place to another place that is called movable property
1: all right
0: kete misappropriation movable property jo thindo movable property kai bhi thi sake thi from cell phone to motorbike anything from promissory note to bank checks take up agar ta ja secret documents hojan ya private documents hojan unan kha vathi kare kai bhi edi she jeke ta ke manu ke interested kayo ta pya कंहिंखे अमानत तौरु वॉलेंटरली रखारायो था पिया पर लेटर ऑन ही इज़ यूज़िंग दैट थिंग फॉर हिज़ ओन पर्पस आर मिस यूज़िंग इट और वेदर ही इज़ डिस्पोज़िंग ऑफ डिस्पोज मतलबु या त हुन या त हुनखे हुनखे ख़र्च थो करे छॾे या ही सेल आउट इन सो समवेयर एल्स ऐं हुनजो जेको बि गेन थो थिए पाण वटि थो रखे पियो दैट इज़ थिंग दैट इज़ थिंग दैट थिंग इज़ कॉल या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बि वञे थी ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में बि वञे
1: अच्छा तव्हां जीअं चयो मूवेबल प्रॉपर्टी जेकी आहे त उहा जेकी आहे जी अचे पई हाणे इन में डॉक्यूमेंट जीअं मूं शुरुआत में इंट्रो में भी पंहिंजो ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट वटि रखाया वेंदा आहिनि अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो ब्रोकर्स वटि ऐं उहे ॾिसंदा आहिनि त बाबा 10-20 रुपया अगरि वधीक मिलनि पिया हुनखे सेल आउट करे छॾंदा आहिनि विदाउट जेको
0: आहे
1: ख़बर ई न हुनखे चयां मां तुंहिंजो बसि रोज़ी मिले पई तुंहिंजी शइ मूं सेल आउट करे
0: छॾी मिस्ट्रस्ट नाहे ट्रस्ट खे ब्रेक कयो आहे ऐं उहा शइ अॻिते तव्हां फॉरवर्ड करे छॾी आहे सेल आउट करे पर हुनखे अञा ताईं इंफॉर्म न कयो अथव एंड दैट मैन स्टिल इन अ कॉन्सेप्ट दैट दैट थिंग इज़ अवेलेबल टू दैट पर्सन ए बी सी जेको बि हुजे सो उन जे उन ट्रस्ट खे उन ट्रस्ट जी भनकड़ीअ खे उन ट्रस्ट खे टोड़ खे वी कॉल द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: सही अच्छा सेक्शन से अगरि अचूं पिया जेको पी पी सी में आहिनि 404-409 इन जो थोरो ओवरव्यू ॾेई वठो त उन में जेके आहिनि इन खां अलावा जेके आहिनि त ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि ऑफेंसिस आहिनि जेके इन सेक्शन जे तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अचनि पिया
0: पाकिस्तान पीनल कोड में जेकी इहे कॉन्सेप्ट सभु अचनि था 403 खां वठी डिसऑनेस्टलीप्रोप्रिएशन 403 404 405 406 407 408 409 इहो पार्टिकुलर जेके सेक्शन्स आहिनि दीज सेक्शन्स आर एलोकेटेड फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी जंहिंमें तव्हांजी डिसऑनेस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन अचे थी पई प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे थी पई हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स ऐं टू पब्लिक ऑफिसर ऐं उहो हुनजी अगरि मिसयूस करे इहे सॼे हिन ज़िमरे में अचनि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में
1: असां लेट्स सपोज अज्यूम कयो असां का शइ जेका हिते कंहिं वटि जेका हिते बतौर अमानत रखाइणु पिया फॉर एग्ज़ाम्पल असां मोबाइल फोन खे ॾिसी वठूं ठीकु आहे ऐं असांजो ॿिया मोबाइल फोन तव्हां पाण वटि रखो कला खां बाद में मां अचां पियो तव्हां खां मथां पियो ऐं उनजो मिसयूज़ पियो करे छॾे हुनखे पासवर्ड बि टेड़ी अख सां ॾिसी छॾियईं ऐं हुनजो मिसयूज़ कयईं उन मां नंबर्स कढी वरितईं डेटा कढी वरितईं त इहो हिन में अचे पियो
0: क्लियरिफाई कंदुमि की अगरि प्रॉपर्टी अगरि काई बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पियो उन लाइ टे शयूं किथे टे लिखियल आहिनि किथे चारि लिखियल आहिनि बरहाल एस पर माए ओपिनियन जेको मां पढ़ियो आहे त हुन में चारि शयूं ऐं टे शयूं रिक्वायर्ड आहिनि सभ खां पहिरियों इहा हूंदी आहे त प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन बाए समवन वॉलेंटरली ॾिनल हुजे वॉलेंटरली इंट्रस्टेड हुजे इंट्रस्टेड जो मतिलबु आहे उनखे असां अमानत तौरु रखारायूं सेकेंड दैट पर्सन हैज़ इलीगली यूज़्ड it for its own purpose whether the contract expressly or impliedly implied jo expressly implied jo matlab hai ya ta sa verbally unhan ki wa she dini ho ji
1: sahi
0: te rakho paan wat asa ta ke concerned time te reasonable time te asa ta ko vati chhadda se
1: ke
0: ya impliedly ho ji implied mana actions and conducts jo thu je asa isharatan chano khani chado ya asa isharatan chano asa ke dei chado ya asa isharatan chano ne ki te rakho that is implied contract true that mean once again मां रिपीट थो कयां दैट मैन हैज़ वेदर ही हैज़ यूज़ इट अगेंस्ट द लॉ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वेदर ही हैज़ डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ठीकु आहे अगरि इन्हनि टिन्हिनि ज़िमरनि में अगरि अचे थो त दैट मैन हैज़ कंडक्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसअप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द
1: प्रॉपर्टी
0: सर हाणे अचो न तव्हांजे ॾिनल मिसाल ते अगरि तव्हांजो दोस्त आहे तव्हां हुनखे ॾिनी आहे शइ अगरि उहो नॉर्मली तव्हांजे साम्हूं ई पासवर्ड खोले थो घर कॉल करे तो उनखां पो कोई भी मैसेज आ कम्युनिकेट करे तो टू टुवर्ड्स फैमिली मदर थी वही फादर थी वही वाइफ थी वही सिस्टर थी वही दैट डजंट मैटर वा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में
1: असन सामू जने करे
0: पे सामू ही न करे बट यू नो दैट के हन अगर कॉल कई मुनी घर ही हाने हाने ते छा थयो डिस्ट्रस्ट के तो क्रिएट थे मिसट्रस्ट के तो क्रिएट थे कि अगर वही फोन खणी करे वही अगर को एक्सटॉर्शन मनी जे लाए कि खेतां जो फोन यूज करे एक्सटॉर्शन मनी जे करे कॉल तो करे तो इन्हीं नंबर ते या थ्रू तहां जे या मैसेज तो करे टेक्स्ट तो करे तो मुखे इलीगल मनी पुजायो
1: ओके
0: ठीक है ना नाउ ही इज अ ब्रेक योर मिसट्रस्ट जो न तहां जे फोन जो गलत इस्तेमाल
1: ऑल राइट आई ने जो असा इने की एग्जांपल लेई ता सकूं असा जो के मोबाइल वॉलेट्स हुंदा है ने जीएसके शाइजी पैसा में पैसा हो जन ओडी वनी फॉरन ट्रांसफर करे छरे
0: तहां उने के दिनो उनो ता पैसा खणी ट्रांसफर करे छरे दैट इज अ मिसट्रस्ट दैट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ओके ओके ओके सो कुछ मैसेजेस आया एंड फीडबैक आयो है असा वे शामिल कंदासी ऑडियंस या भी सवाल जे कंदे इंक्लूड क्यों पिया एकडो ई वॉइस नोट है अचो तो बुधु पिया
2: अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब हसन तां प्रोग्राम बुधी रहयो हूं त तां जो टॉपिक सा रिलेटेड मुंदे को सवाल आ त अगर कैसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वने त एफआईआर की दर्ज कई वने या उन लाए केड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत की जरूरत पई सके थी असा को सर मते असा को बताएंगे
1: ठीक है अदा तैयब सर इन्हनि चयो त अगरि थी वञे थो इहो पहिरियों त असां अञा थोरो मां चाहियां पियो त तव्हां असांखे एग्ज़ाम्पल्स ॾियो त जीअं असांजो

0: असांखे ॾिसे थी या जेकी असांखे ॿुधे थी उन्हनि जे लाइ अगरि जे विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे त उन जस्ट फॉर देयर रेप्यूटेशन फॉर देयर सेक ऑफ रेप्यूटेशन मां उहो शइ ॿुधायां थो मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज़ अगरि को माण्हू आहे कंहिंजो सर्वेंट आहे घर में अकेलो रहे थो कुराड़ो आहे या को कुराड़ी आहे ओल्ड एज आहिनि रहनि था पिया या उनजी फैमिली ॿाहिरि शिफ्ट थियल आहे हाणे उहो चई थो वञे पंहिंजे सर्वेंट खे या पंहिंजे क्लार्क खे चई थो वञे त मुंहिंजे अकाउंट में हिन टाइम 20 लख रुपया पिया अथव जेकी मुंहिंजी गाॾी आहे अगरि मूंखे कुझु थी वञे त मुंहिंजी गाॾी ऐं मुंहिंजो जेको अमाउंट आहे उहो तव्हां मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स खे शिफ्ट करे छॾिजो.
1: ठीक आहे.
0: हाणे डिसीज़ पर्सन जे दौरान उहा शइ हुननि खे ख़बर हुई लेटर ऑन त जॾहिं हुननि इंफॉर्मेशन छा ॾिनी गाॾी त हुननि हैंड ओवर करे छॾी हुननि 20 लख जी जॻह ते 5 लख पाण यूज़ करे छॾिया ऐं बकाया 15 लख ॾिननि जेकी हुननि 5 लख खया न देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
1: ऑल्ड
0: राइट. कुझु माण्हुनि खे ज़ेवर हूंदा आहिनि अगरि मिसाल लेडीज़ हूंदियूं आहिनि कमु करण वारियूं अगरि औरतूं हूंदियूं आहिनि या हुनजी ख़िदमत वारियूं हूंदियूं आहिनि सर्वेंट्स हूंदियूं आहिनि या मेड सर्वेंट जेके चइबो आहे अगरि उहो हुन वटि ज़ेवर आहिनि
1: जी जी
0: सपोज़ हुनखे 3 तोला 5 तोला या सपोज़ 10 तोला सोनो आहे त उन्हनि पंहिंजे वली वारे असांखे हाली न ॿुधायो आहे त मूं वटि केतिरो सोनो आहे
1: जी जी
0: पर हुनजे मेड सर्वेंट खे ख़बर आहे नाओ शी लेडी इज़ डाइट. ठीकु आहे न औरत गुज़ारे वई औरत गुज़ारे वञण खां पोइ त नाओ हुन छा कयो अलमारी खोली अलमारी मां 1 तोलो 2 तोलो जेको बि सोन जेतिरो खणी सघी हुन खयो बाक़ाया हुन हैंड ओवर करे छॾियो पंहिंजे वारिसनि खे फ्रॉम देट 10 तोला मां अगरि हुन 2 तोला अगरि मिसयूज़ कयो देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
1: ओके. अच्छा हिन में हिकिड़ी ॿी मुंहिंजे ज़हन में अची वई ॻाल्हि अक्सर तव्हां ॾिठो आहे असां वटि जो आहिनि एक्सीडेंट्स घणा थियनि पिया ऐं उन में हुनजी जेका आहे त जंहिंजो एक्सीडेंट थिए पियो हुनजी कंडीशन सफ़ा डाउन हूंदी आहे जेके हुते माण्हू मौजूदु हूंदा आहिनि त घणा मूं ॾिठा अहिड़ा केसिस त उते हू उनजा वॉलेट्स मां पैसा बि कढी वठंदा आहिनि या का क़ीमती शइ हूंदी आहिनि उहा खणी वठंदा आहिनि त तव्हां छा उन्हनि ते चार्ज थी सघे थी
0: क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि उहे चवनि था मिस अप्रोप्रिएशन में. मिस अप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट वन सेकेंड तव्हांखे क्लियर कयां. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरी शइ हैंड ओवर थिए थी पई
1: बदनीअ
0: थी बाद में थी पैदा थिए.
1: मिस
0: अप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो पर इंटेंशन बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी. इनिशियल हुन जो न हूंदो आहे इंटेंशन न हूंदो आहे त मां हीअ शइ मिस अप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में खयानत कयां. जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीज़ कुराड़ो आहे अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई
1: वञे
0: लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ हेर फेर करे छॾे त न बसि

0: ऑर्डर जे दौरान घर ताई पजंदे पजंदे में कोई ऑर्डर गुम तो थी वे ठीक आ तो वो जको ऑर्डर जो गुम थे या ऑर्डर के बी कई जगह ते डिलीवर करन पैसा पूरा वटी छन और जको उन विच में जको मिस अप्रोप्रिएशन थे थी दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: अच्छा इन ते ये भी एक अक्सर थी तो है शेवा साहब ते स्पेशली ऐसा काई शे कदे कदे काई भी शे खाण वाली घुराई ना हो तो वो जको वची
0: सामान पूरा अवेलेबल
1: खाई तो इंदो रास्ते में
0: एग्जैक्टली सामान अवेलेबल न होंदो या उन के सपोज आने एक बिरयानी जो पैकेट आ गयो नाणी चढ़या पुछंदा से ते छा है पर डिठो वने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे कोरियर सर्विस से मां सपोज कोई कोरियर हाले से कोरियर सर्विस जो थ्रू असा पे डॉक्यूमेंट्स मोकल दऊं कपड़ा मोकल दऊं फर्नीचर्स मोकल दऊं कोई भी एडा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स
1: जी जी।

0: पर्टिकुलर सुन असां मोकिले छॾंदाऊं ठीकु आहे अगरि या शूज़ बि मोकिलंदाऊं या असां कपिड़ा अगरि ड्यूरिंग हिन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो को सर्विस अगरि हुनखे मिसयूज़ करे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे थी फ्रॉम दैट पॉइंट ही इज़ अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ट्रस्ट ऑल दैट ऐं वेयर हाउसेस ते अगरि असां
0: वेयर हाउसेस में ईअं थींदो सपोज़ तव्हांजो हाणे हिन साल मून थो ठहे नारायण कागान वञण जो गर्मियूं बि अचनि थी पियूं ऐं मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हले वेंदो आहे तव्हां पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे लोकेलिटी में गाॾी बीहारींदव
1: ओके
0: त हे मुंहिंजी गाॾी खे तव्हां संभालियो या पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहारे वेंदव गाॾी त तव्हां खणी था वञो या अगरि बाए फैमिली था वञो त ट्रेन जे थ्रू सफ़र कंदव हाणे तव्हां

0: personal gain ऐं कंहिंजे personal loss जो that is called criminal breach of trust.
1: Okay. ऐं ईअं अक्सर थींदो आहे तव्हां private मुलाज़िम जेके आहिनि प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह उन्हनि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान
0: स्टोरेज हूंदा आहिनि, वॾा स्टोरेज हूंदा आहिनि, मिसाल मेडिसिन स्टोरेज हूंदा आहिनि, फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि, मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि, कंप्यूटर स्टोरेज. हाणे कंहिंखे को 1000 हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो, हाणे 1000 मां अगरि हू ॿ फोन बि खणी थो छॾे, को माइना त नथा रखनि, 1000 फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे, देट इज सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड मिस्ट्रस. उन मिस्ट्रस खे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चवबो आहे, छोकी अमानत में ख़यानत थिए थी पई, प्रॉपर्टी वॉलेंटरली वञे थी, को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर देट थिंग, ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुनखे यूस करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ, देट इज कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
1: ओके, अच्छा, ही ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण खे सवाल आयो, उन्हनि सवाल खे FIR कीअं कराइजे अगरि एक्ट इन केस ई थी वञो, उनजे सवाल खां पहिरियां हिकिड़ो सवाल, अगरि इहो थिए पियो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या हीउ क्रिमिनल नेचर आहे, सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी सघनि था या FIR जे लाइ जेके आहिनि.
0: आई गॉट योर पॉइंट. तव्हांखे चयुमि के सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा. हिकु त प्रॉपर्टी इज बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड, वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन. ॿी इहो ई आहे त एज पर कॉन्टेक्ट दैट इज कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली ऐं इम्प्लाइडली, के हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट ऑन सर्टन टाइम ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौके ते अची करे ओकेजन ते अची करे, आई विल टेक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि. अगरि उनमें अगरि को मिसाल तव्हां हुनजे मथां को ख़र्चु कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी, आई विल पे यू. ठीकु आहे, पर उहो छा थो करे, उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे. टी पॉइंट इहो आहे त दैट पर्सन इज डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे, या दैट पर्सन इज़ रिमूविंग, यानी कि डिस्ट्रॉय थो करे छॾे. सो उन छा थो करे त वॉलन हुन शइ खे उन पूरे जो पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे उन एज़ पर लॉ हुनजी वायोलेशन करे थो. त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियल आहे, छोकी प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे, लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे, त हुनखे यूज़ थो करे. हाणे सिविल में छा आहे, सपोज़ कंहिं कंहिंखां पैसा वरिता, उहो पेमेंट त ॾींदो थो अचे, पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे, उन में बदनीयती न आहे, हो कुझु मसलनि जे करे, हालातनि जे करे हो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे. हिते छा आहे, हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे. ठीकु आहे, इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल.
1: शहबाज़ साहब, हीअं अक्सर थींदो आहे, तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हिन प्रैक्टिस में, त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे, चवंदो आहे न ॾींदो मां पैसा, जेको करिणो थी वञी कर, पोइ बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
0: सिविल थींदो, उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्टेक्ट आहे न, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट तां हलिया वेंदो होॾे, सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां. हिते छा आहे, हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां, जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न, प्लीज हूंदी आहे, बेलमेंट हूंदी आहे, मॉर्गेज हूंदी आहे, हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि, कॉन्सेप्ट्स आहिनि इहे बाक़ी बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा, त बेलमेंट में छा थींदो आहे त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न

0: प्रॉपर्टी के ट्रांसफर तो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ीशन पोज़ीशन न ॾींदो सॉरी पोज़ीशन ॾींदो एंटाइटलमेंट न ॾींदो मालिकी न ॾींदो मालिकी माण्हू वटि ई रहंदी पोज़ीशन ॾेई छॾंदो हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां खां सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो हुन जो लुक आफ्टर कंदो इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां तव्हां कंहिं माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते ऐं इहो फाइन बहितरीन क़िस्म जो इहे चांवर आहे ऐं हाणे तव्हां रखाए हलिया वियो साईं मां तव्हांखे सुभाणे इहो खणी वञो हाणे माण्हुनि छा कयो त ॾिठो हे चांवर तमामु सुठो उन मां 1 किलो चांवर खणी करे विकिणे छॾी ऐं पंहिंजो लो क्वालिटी जेको चांवर आहे मिलाए छॾी उनजी मिसयूज़ आहे न जेको जेको उन चांवरनि खे मिसयूज़ करे छॾियो उन चांवरनि खे पंहिंजे पर्पज़ लाइ तो गेन कई विकतई उन मां उनखे पैसा मिलिया वरी पंहिंजो लो क्वालिटी जो चांवर तव्हां सां मिलाए छॾियईं ऐं जेको मिलाइण जेको जेको जेको फेज़ आहे न उन फेज़ खे असां चवंदा आहियूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ऑल राइट अक्सर त को ईअं अगरि ॿुधायां वञे चांवर सुठी क्वालिटी वारा था हमरा त पचाइणु शुरू थी वेंदो
0: थींदो आहे कॾहिं कॾहिं थींदो आहे या त ॾिसो न या त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे न मुंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू लुक आफ्टर हिम असल मां तव्हांखे छा चयुमि बेल बेलमेंट जेके चवंदो आहे अमानत तौरु रखंदा आहिनि प्लीज बि असां छा चवंदा आहियूं अमानत तौरु रखाईंदा
1: आहियूं
0: प्लीज में छा थींदो आहे त सिर्फ़ सिर्फ़ असां को लोन वठंदा आहियूं कंहिं पर्पज़ जे लाइ त जॾहिं मां लोन तव्हांखे वापसि करे छॾंदुमि तव्हां इहा प्रॉपर्टी काइंडली मूंखे हैंड ओवर कंदो इन इनखे चइबो आहे अमानत में शुरू में बदनीत मां वन सेकेंड रिपीट थो कयां आई एम रिपीटिंग डेट पॉइंट फॉर द दोज़ पर्सन जेके असांखे विच में बि अगरि असांखे कंहिं जॉइन कयो आहे
1: त
0: हुनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी वाट काइंड ऑफ टॉपिक इज़ बीइंग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड सर शहबाज
1: तैयब जो सवाल ते अचूं पिया
0: तैयब हाणे मां तैयब जिन सवाल ते ईंदुमि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी मिसाल सपोर 403 जे अगरि तव्हां डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में वेंदो हुनजी पनिशमेंट 2 साल आहे ईअं अगरि तव्हां 403 में ईंदो हुनजी पनिशमेंट 3 साल आहे ईअं तव्हां अगरि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हुनजी बि 3 साल
1: आहे
0: डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज बींग डन
1: तो
0: डिपेंड करे थो लाजमी 2 सालनि खां वठी करे वेंदे 10 साल ऐं प्लस लाइफ इम्प्रिज़नमेंट ताईं बि हिनजी सज़ा आहे पर अमूमन छा आहे 10 साल इहो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बि आहे इहो सेशन ट्रायल बि आहे
1: ठीकु आहे अच्छा हिकु ॿ ॿिया बि असां वटि वॉइस नोट्स आहिनि जेके मां इंक्लूड कयां पियो
2: जी जी अस्सलाम वालेकुम सर मां नाम ज़ुबैर अहमद मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इस मुतलक मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फ़र्क होता है आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं इसका जवाब दें प्लीज
0: वेरी गुड क्वेश्चन
1: सुठो सवाल अच्छा सवाल किया है ज़ुबैर आपने
0: जी थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड बाय यू चीटिंग Cheating is a kind of deception. It's kind of concealment of facts for anything. Agar ye samjho ta thagi karan jeke dhoko den kai ke manu ke yakeen garan dis mana etro induce kare chadan te jeki ya she ya ya waqai munji ya
1: sahi
0: mukha tu khareed kar jade tu she unji nahi mistress jo mata ki yo budhai deception cheating and misappropriation jo ya ta sirf hai sirf once again coming to the same point ke badniyati from the beginning cheating mein jeki dishonesty hai wo shuru khai
1: okay
0: he has intention to deceive that person mana baad mein create na thyo jeko mensri hai jeko exri hai jeko mensri hai intention jeke sa chaunda jeko mensri hai wo starting mein created
1: yes yes
0: theek hai na later on manu chato kare ta exri hai tum sa gada par jeko misappropriation mein jeki the thi wo mensri hai tan jeke sa chan badniyati wo shuru mein उहो लेटर ऑन क्रिएट थी थिए मूंखे अगरि हिकिड़ो मोबाइल थो मिले रोड ते मां खणी छॾियो माना आई हैवंट फाउंड रियल ओनर मूंखे नाहे ख़बर पर मां हुनजी पब्लिकेशन बि करायां थो मां पाड़े में अनाउंसमेंट बि करायां थो मां लोकेलिटी में न्यूज़ बि फैलाए थो छॾां अगरि मुंहिंजो सर्किल आहे मां हुते व्हाट्सअप ते मैसेज बि हलायां थो मां फेसबुक ते हिकिड़ी वीडियो बि चाढ़े थो छॾां त हे मोबाइल कंहिंजो आहे अगरि जेको बि रियल ओनर हुजे अचे मूंखां वठे
1: वठी वञे
0: ठीकु आहे हाणे मुंहिंजी लुक आफ्टर कंदुमि केयर कंदुमि पर मोबाइल मूंखे मिलियो मूंखे ख़बर आहे मोबाइल बाबर जो आहे पर स्टिल आई एम नॉट गिविंग that thing to the barber, Nathodiyama. I know where is the barber live, what is the location of the barber, in where place, in which place the barber is working.
3: Sahi.
0: But still that thing I'm using for my own purpose, that thing is called misappropriation. Intention baad mein create hote.
3: Sahi. Cheating mein,
0: cheating mein shuru mein hi tha jo intention hi dhoko dena.
3: All right.
0: Theek hai na? That's a difference between cheating and misappropriation.
1: Ekro bio sawal bhi asan aaya hai program mein shamil kyon pya.
4: Assalamu alaikum sir, my name is Abdul Nisar. Ji da tawa jo program badi raha aayo. असां जेको नंढो सवाल हुयो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां अगरि कोई बि माण्हू जेको आहे सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे थो पियो त ज़ाहिर आहे कानून जे मुताबिक़ हुनखे का सज़ा बि ॾिनी वेंदी थोरे इन बारे में असांखे गाइड कजो त जेको आहे सो उनजी केतिरी सज़ा आहे ऐं असां उनखे कहिड़े तरीक़े सां सज़ा ॾियाराए सघूं था.
0: बहुत कुझु
2: प्रोग्राम ॿुधी रहियासीं जीअं त तव्हांजो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां टॉपिक हले पियो. हुन में हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जी सज़ा छा आहे, इहो ॿुधाइजो थोरो.
0: धोखेबाज़ी करे थो अमानत में सज़ा कीअं ॾियारे. सो बहितर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
3: आहे.
0: ॾिसो न, असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस डेड पर्सन या ए बी सी पर्सन. अगरि कोई माण्हू क्राइम थो करे न त उहो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे, पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे. त देट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी, माना हिन शख़्स हिकु इंसान सां क्राइम न कयो आहे, पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे. छोकी रियासत इज़ द मदर, छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी
3: आहे,
0: जो रोल मदर वारो हूंदो आहे की प्रोटेक्ट टू फीड एंड टू गिव शेल्डर टू इट्स इंडिजन जेके जेके माण्हू आहिनि, जेकी हुनजी पब्लिक आहे, जेकी आवाम आहे, उन्हनि खे जेको आहे न इहे टई शयूं मुहैया कनि, स्टेट जो कमु
3: आहे.
0: सो इहे इंडिविजुअल सां क्राइम न हूंदो आहे, पूरी स्टेट
3: सां क्राइम हूंदो आहे. सो हिकु कॉलर शामिल था करे वठूं, देन असां प्रोग्राम खे कंक्लूड कयूं पिया.
5: अगरि मां सवाल इहो कंदुमि, अॼु में बि तव्हां सां सवाल कयो की तक़रीबन अधु खां सवाइ अमल थी चुको आहे, वरी बि अर्ज़ु कंदासीं
3: जी.
5: हा त इहे जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड रोड ते हले थी,
3: ठीकु आहे,
5: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ी सां थी करे, जे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं.
3: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो, इनशाला ताला कारवाई थींदी, मंशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी, ठीकु आहे.
5: सरकार मां त माना पकड़ायान बि, पर हिते छो अहिड़ो या एस पी बि मां सां हुजनि, मां किराए वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ायानि जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे. इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो
0: आसमान खिलाई मकड़ू हर टाइम सुपरमैन त न
3: ईंदो,
0: जेके असां इमेजिनरी हिकिड़ी दुनिया ठाही, आयरन मैन, सुपरमैन, मार्वल
3: सीरीज,
0: जेके माण्हू हुयूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था, कयूं था पिया, अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट कयूं था, बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो, चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं.
3: सो ही सुपर हीरो
0: तमामु बहितर आहे, डू अप्रिशिएट हिम के हुननि इहो जेको आहे न कमु करे,
3: जेको आहे न अक्सर प्रोग्राम में असांखे पॉइंट आउट करायो, मां सम्झां पियो त हिन प्रोग्राम जे थ्रू जेको आहे
0: शाउट आउट आवाज़ बि शाउट आउट ॾियणु खपे हिननि खे, वेरी ब्रेवो टू ब्रावो जे लाइ असां कमु कंदा आहियूं तमामु. जीअं हाणे अधे वारे हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो
3: आहे,
0: मां आई हेड्स ऑफ देम, माना मां सल्यूट पेश कंदुमि, सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे जेके इन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जी क़ुर्बानी बि ॾियनि था ऐं पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे ऐं इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था. सो मां जे अॻु ने चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा
3: आहिनि, सुपर हीरोज़
0: असांजे अंदरि ई हूंदा. अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था, फॉर मी दे आर आयरन मैन, फॉर मी दे आर सुपरमैन, फॉर मी दे आर द बैटमैन. सो मार्वल ऐं डी सी खे ॾिसणु न खपे, असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज अवेलेबल आहिनि. वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे. मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन अनासिर खां.
3: बिल्कुलु शहबा साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पुराणी ते पहुतो आहे. इलाही शयूं पंहिंजियूं रहिजी वियूं आहिनि अञा. लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूवर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहे जेका इहा आहे ब्रिच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे, इन खां बची सघनि?
0: मां हिकिड़ो इहो चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन.
3: ओके,
0: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिशि कयो त हुनजा आई विटनेस ज़रूरु हुजनि.
3: ऑल राइट,
0: ठीकु आहे. ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे, पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो, एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो. उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि, अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे, तव्हां वटि वीडियो आहे, तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि, तव्हां वटि व्हाट्सअप कॉल्स आहिनि, अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो, मालिकी ॾेखारियो, इहा शइ तव्हांजी आहे. उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया. त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिशि कयो त तव्हां हुनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां.
3: अच्छा, हिन ते मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखायूं पिया न, त हू चवंदा आहिनि हीअ ॿियो आहे, असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं, पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे. त इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया, अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि, ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो. जी
0: ॾिसो न, तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो, सवाल जो जवाब बि पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा.
3: अमानत तौर
0: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो, रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमालु करे छॾियो त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे.
3: सुठो
0: लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न सेम प्लेस.
3: सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अलाह हाफ़िज़.
0: थैंक यू वेरी मच.
6: सचल की सरमस्त धरती,
7: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
6: GAFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज.
8: छा तव्हां समर वेकेशन खे फ्रूटफुल बणाइण चाहियो था? छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था? त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे. ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 months समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 year DIT कोर्स, 6 months CIT कोर्स. तजुर्बे कार टीचर्स जी निगरानी में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सां गॾु सिखिया, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो ऐं पंहिंजी समर वेकेशन खे कामयाबी ऐं सिखिया जो बहितरीन मौको बणायो. लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. एडमिशन्स ओपन नाउ. व्हाट्सएप 03003113830. मोबाइल 03000093120 एंड 03013865 590. एड्रेस लार टॉवर, फर्स्ट फ्लोर, 100 feet रोड, भरसा, IBA यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2, सखर. ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लर्न स्किल्स, बिल्ड योर फ्यूचर. खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराइण जी आखिरी तारीख 5 June 2026 ताईं वधाई वई आहे. जी हाँ, साल 2026 जे लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में. BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं फिज़िक्स, रियाज़ी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स. ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला. मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप्स बि मौजूद. एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घटि में घटि 50
9: सैकड़ो मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी उम्र की हद 35 साल फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है लिहाजा देर न करियो ऑनलाइन अप्लाई करियो www.apy.bnbwu.edu.pk
10: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे खेल महा से और बेजानपन आप सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
11: आवाज़ जी स्किन डल ऐ बेरोनक लगे थी हाने पहजी स्किन के लियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम आवाज़ स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐ ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी आवाज़ रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
12: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक एनआईसीबीडी रोड सखर हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी डीएचएमएस आरएचएमपी इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्त गुर्दे एंड मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो टाइम सुबह 10 खां शाम 6 वगे ताई एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 0327-84-60-746
13: यार मां छा क्या किथे वन्या घर में वेठो आहां पर ठीक ही नहां शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थई
14: छो भला छा थियो आ तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
13: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भूख सही लगे थी अई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पैर सुन थी वनन था अई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
14: यार तुजा घणा न बस एक ही मसलो आ
13: एक इहो की है
14: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो अई न ताकत मिलंदी
13: त पो मां छा कया
14: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुजे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुजे मैदे के बिल्कुल ताजो अई मजबूत करे छरिंदो भूख खुली विंदई खादो सुठे नमूने हजम थिंदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
13: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
14: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0355-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त गर्मी थकावट या दिल जी बेचैनी महसूस कयो पिया हाने परेशान थियण जी जरूरत नाहे पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटीन मां तैयार कयल अहिड़ो शरबत जेको तव्हां खे दे ताज़गी सुकून ऐं हक़ीक़ी राहत दिल जी धड़कन खे मुतवाज़न रखण गर्मीअ जे असर खे घटाइण ऐं जिस्म खे तवानाई ॾियण लाइ शरबत रूहे राहत रोज़ानो सिर्फ़ हिकु गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां
11: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
15: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
16: तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

छा करणो आहे। अमरीकी जंग वारे वज़ीर पेट हेक्सेथ जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। पेट हेक्सेथ चयो त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार नथो रखी सघे। पाकिस्तान अमरीका जो मुख़लिस दोस्त आहे। शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल अमन ॻाल्हियुनि में शानदार किरदार अदा करे रहिया आहिनि।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वाद बाबत फैसलो न करे सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। व्हाइट हाउस पारा चयो वियो त ईरान सां वाइदो अमरीकी मफादन ऐं ट्रंप जी शर्तनि तहत ई मुमकिन आहे। हुन खां अॻु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी बहिरी नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो। सदर ट्रंप बिया मकसद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमरीका ईरान जी बहरी नाकाबंदी खत्म नाहे कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप जे यू टर्न ते रद अमल। मोहसिन रज़ाई चयो त अमरीकी सदर सिफारतकारी दौरान टियों भेरो धोखो ॾेई रहियो आहे। अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रंप जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा न आहे। जंग जे खात्मे लाइ पावकार फ्रेम वर्क लाइ तयार आहियूं। वक़्तु अची वियो आहे त ॿिए रदेबल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरे अमीर शेख तमीम बिन हमद अंसारी ते राब्तो करे ॻाल्हि ॿोल कई। मसूद पेशकियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो इख़्तियार कयो। ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे।

राणीपुर जे फेरोज हाजी राजपर गोठ ते बरसात प्रोशन जी गिरफ्तारी लाए पुलिस चढ़ाई दौरान हथियारबंदन जी फायरिंग में एक पुलिस अहलकार शहीद गोलियों लगन सबब शहीद थी वेल अहलकार मोहम्मद वारिस सारे जो लाश अस्पताल मुंतकिल अहलकार जी शहादत का पोए पुलिस जो सागे गोठ में सर्च ऑपरेशन दौरान पंज शकी जवाबदार गिरफ्तार एचआईवी बचाव मुहिम लाइ निकतल जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर गंबट के गिम्स अस्पताल पहुंतो एचआईवी में मुब्तला बारन की आदत जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो मीडिया से गालाइंदे चयो तो कराची के सिंध का धार थियण न डींदासीं पूरे मुल्क में सेहत जो शोबो खराब है उनके सुधारणो पवंदो एचआईवी में मुब्तला मरीजन से नफरत न पर प्यार कयो।

कैनिया पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान के वारिसन जो एहतजाज वारिसन जो चवण आए नसीम टैक्सी हल्ए बचड़न जो पेट पाली पुलिस केस जुड़तू मुकाबले में कतल कर मकतूल नौजवान की न्याणी रोईंदे एहतजाज कर पुलिस बाबा के बेगुनाह कतल कर वारिसन पारा मुलविस अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो।

कराची जे जिना अस्पताल में औरत पारां वॉशरूम में ॿार ॼण वारे वाक़िए जी जांच लाइ कमेटी क़ाइमु। जांच टीम वाक़िए जी जांच सूमर ताईं मुकमल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत खे पेश कंदी। जिना अस्पताल में डॉक्टर जी मुबैना ग़फ़लत सबबि औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॼण बाबति वीडियो वायरल थी हुई।

में पोरियत जो मुबैना कातिल वडेरो पुलिस की पकड़ का आज नव ढी अग वडेरे के पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल बेमड़ के मुबैना तौर टे गोलू हणी कतल कयो हो। पुलिस वकारो बणजी वाके जो इतफाकी केस दाखिल करे छो। जरियन मोजिब बासर मकतूल के वारिसन के धमकियों दई मीडिया आडो अचण का भी रोके रहा है। लाड़काने में हफ्तों अग कबूतर पकड़े नडियण वाले मामले ते वेश्याणे तशद जो निशानो बनाया लींगर चांडका अस्पताल में दम दई छो। 13 वरियन जे लींगर हसनैन रजा के 22 मई ते बिरोई बिरादरी जे माण्हुनि कबूतर पकड़े नडियण तां मुबैना तौर सख्त तशद जो निशानो बनायो हो। चांडका अस्पताल में एक हफ्ते का दाखिल लींगर अज दम दई छो। लींगर जे वालिद सईद भुट्टो मुतालबो कयो आहे त पुट मथां वेश्याणो तशद कंदड़ जवाबदारनि खिलाफ़ केस दाखिल करे खेन फौरी गिरफ़्तार कयो वञे।

करोड़े रुपया करप्शन केस में एंटी करप्शन की अदालत अगोणे आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 जवाबदार के तलब करे वरतो। आईजी समेत अगोणे डीआईजी फैसल बशीर बेमण, अगोणे एसएसपी तनवीर अहमद ताहिर बेन पुलिस मुलाजमन की पगार में गैर कानूनी कटौती अख्तियार नाजायज इस्तेमाल जो इल्जाम है। अदालत सभी जवाबदार के 9 जून से जाती हैसियत में तलब करे वरतो।

कराची में कुत्तन जो आज़ार रेबी सबब वधी के कनीगर फोत अस्पताल जरियन मौजिब न्यू कराची वासी 14 वरियन जो अली फाद इलाज दौरान फोत थी वो नीगर के कुछ वक्त अग कुत्ते डाड़े जख्मी कयो हो हलंदड़ साल कराची में रेबी जा 25,000 का वधी के केसेस रिपोर्ट किया कुत्तन जे डरन सबब 10 शहरी फोत थी चुका। कोटड़ी में वार्डन की बाबूली गाल ता चाढ़िया बिरोही बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़ो 10 जना जख्मी साइड की बिरोही चौक वाले इलाके में धुरियन में जेड़े दौरान लठियन सिरू पत्थरन जो वसकारो जख्मियन में मुइन मोहम्मद अलीम जहाजेब नबील मुजफ्फर अली चाडो कुर्बान बिरोही नेमतला बिरोही बया शामिल। बदल वनडे सीरीज की पहली मैच में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान खिलाफ बैटिंग जारी रावलपिंडी में जारी मैच में कौमी टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी टॉस खटने का पोए पहरिया फील्डिंग जो फैसलो कयो सीरीज जो बाकी ब मैचेस लाहौर में खेडी वेंदियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: टाइम रोजानो सुबुह 9 बजे का शाम 6 बजे तक पर जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-760-63
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से दावा व्हाइट हाउस पारा चयो त ईरान सां वायदो अमरीकी वफादार ऐं ट्रंप जी शर्तन तय ते मुमकिन आहे। इन खां अॻु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो। सदर ट्रंप बिया मकसद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमरीका ईरान जी पहिरीं नाकाबंदी ख़तम नाहे कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप जे यू टर्न ते रद अमल। मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीकी सदर सिफारतकारी दौरान टियों भेरो धोखो ॾेई रहियो आहे। अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रंप जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा न आहिनि। जंग जे ख़ात्मे लाइ पावकार फ्रेमवर्क लाइ तयार आहियूं। वक़्तु अची वियो आहे त ॿी धुर अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोल। मसूद पेशिकियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो इख़्तियार कयो। ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारियुनि जी पासदारी करे।

रानीपुर जे फेरोज हाजी राज पर गोठ ते मनशियात प्रदर्शन जी गिरफ्तारी लाइ एलकार मोहम्मद वारिस नारे जो जुलाश अस्पताल मुंतकिल एलकार जी शहादत का पोए पुलिस जो सागे गोठ में सर्च ऑपरेशन दौरान पंज शकी जवाबदार गिरफ्तार एचआईवी बचाओ मुहिम लाइ निकतल सुल्कार अली भुट्टो जूनियर गंबट जे गिम्स अस्पताल पहुतो एचआईवी में मुब्तला ॿारनि जी अयादत कई जूनियर सुल्कार भुट्टो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कराची खे सिंध खां धार थियण न ॾींदासीं पूरे मुल्क में सिहत जो शोबो ख़राब आहे हुनखे सुधारणो पवंदो एचआईवी में मुब्तला मरीज़नि सां नफ़रत न पर प्यार कयो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
2: आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडू सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ताईं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो। आमीन या रब्बल आलमीन। हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक असां में ईद खां पोइ असां अॼु असां लाइव मौजूदु आहियूं ऐं मां पंहिंजे तरफ़ां ऐं असांजे जीअं FM जी टीम जे तरफ़ां अवां सभिनीनि प्रिय प्यारनि भाइरनि भेनरुनि बुज़ुर्गनि खे ईद जो लख लख वाधायूं पेश कयूं था ऐं उमेदु कयूं था त तव्हां सभई पंहिंजनि प्यारनि सां गॾु ईद कई हूंदी ऐं ख़ुशियुनि में ख़ुशि हूंदा ऐं आबाद हूंदा, सदाई आबाद हूंदा। सामिन असांजो प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां हाज़िर ख़िदमत मां वांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी मूंसां गॾु सकरनि जा मशहूरु ऐं मारू होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह सां वाबस्ता आहिनि। डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़नि जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जलन तिल जो वधणु जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज फालेज खंघ टेबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु मर्दनि तोड़े औरतनि में वज़न जो न वधणु इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरनि होम्योपैथिक सुबुह जो 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरनि में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो सुबुह 9 खां 12 वॻे ताईं जीअं समय डॉक्टर साहब जी क्लिनिक 8 ॾींहं खुलियल आहे। सिर्फ़ु जुमे ते डॉक्टर साहब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां 12 वॻे ताईं आहे, यानी जुमे नमाज खां पहिरें ते डॉक्टर साहबु 12:30 ते मौजूदु हूंदा ऐं वधीक वरी जुमे जॾहिं बि अचो था त डॉक्टर साहब जे नंबर ते कॉल करे डॉक्टर साहब खां पुछी सघो था त तव्हां क्लिनिक ते मौजूदु आहियो या न। सभिनि मां अव्हांखे डॉक्टर साहब जो नंबर नोट कराईंदो हलां 0327-9984-7063 8 4 7 6 3 जीअं समय इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे। इन ते मां डॉक्टर साहब सां कॉल करे सवाल बि पुछी सघंदा आहियो ऐं क्लिनिक ते बि डॉक्टर साहब वटि इहो ई नंबर अव्हां जे लाइ मौजूदु हूंदो आहे। समय डॉक्टर साहब तरफ़ हलंदा उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन्हनि खां टॉपिक जे हवाले सां कुझु मालूमात वठूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: डॉक्टर साहब अॼु को पंहिंजो टॉपिक कहिड़ो हुयो असांजे सामान जे लाइ?
1: जी बिल्कुलु, अॼु को प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां, उन में असांजो जेको टॉपिक आहे उहो टॉपिक असां अॼु रखंदासीं छो त ईद जी ख़ुशियूं थी वियूं, गोश्त वग़ैरह खाधोसीं, हाणे आहे त का तकलीफ़ आहे, का बीमारी आहे, उन जे मुताबिक़ असां पंहिंजो टॉपिक रखंदासीं। उन टॉपिक में सभिनि खां पहिरीं हिकिड़ी शइ यादि रखो त अॼु जे प्रोग्राम में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कंहिं बीमारी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल नथा करे सघूं। उन जी वजह छा आहे त गोश्त जो इस्तेमालु थियलु आहे त उन सां छा छा तकलीफ़ूं महसूसु कयो त ओॾीमहिल तव्हां दवा जे लाइ कंहिं डॉक्टर में वञो छो त बीमारी शुरू थिए पई ओॾीमहिल ई असां दवा वसीले सां उनखे रोके इलाज करे उन खे ख़तमु करे सघूं था।
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था, केरु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, किथां खां? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: अदा केरु ॻाल्हाए पिया किथां खां? हलो
2: वालेकुम।
0: अदा वालेकुम सलाम, केरु ॻाल्हाए पिया किथां खां? जेदा छा सवाल आहे डॉक्टर साहब लाइ?
2: डॉक्टर साहब

0: अजरक साहब अधे के जो धक लगो जो सूर छे नो जो टंग जो सूर हो जी समीन
1: जी साई अवाज सवाल जो पहले जवाब दींदी अगते हलंदी वरी भी टॉपिक की तरफ गाल तरफ पर उन गो गड़ी सही टंग में जो सूर दिसो अवं सभी का पैर बेहतर रो सुबह आचर है असि क्लिनिक खुलल होंगी मुख्य दिखारे वन एक गाल बाकी तो मुख्य एक्सरे की जरूरत पवी एक्सरे का ऐसी करवा समझी सकता तो कॉल रिसीव क्यों था सवाल जो जवाब दिया तो सवाल मुख्य समझण सही नमूने से
0: डॉक्टर साहब कॉल वा था अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: अदा केर गलाए पे किथा का
2: थांगड़ का गलाया तो हाशिम मला
0: सांगर का जी मुझे बात छा सवाल डॉक्टर साहब ला
2: मुखे शुगर आए
0: जी
2: शुगर आए मेडिकल गोरियों खावा दो पर फर्क को भी कौन दो पावे ब्यूट किरी जी का खबर ना है तो केड़ी करनी है केड़ी खानी है
0: कदे शुगर थे वा कितरो रहे तो शुगर
2: तकरीबन 370 380 ते 90 ते ही अचे तो
0: अच्छा कदे थे वा शुगर
2: 8 महीना खान थी गया ना
0: अच्छा मतलब कंट्रोल में न पियो छे
2: कंट्रोल में न तो छे जो पापा सुकला न वे तो मेडिकल वाले न के बंद करे जदा हम तब कंट्रोल में कोन दो जे
0: बियो छा खाइंदा हो खादे में
2: यो दाल खाइंदा आयो बस गरीब मानो आयो मजदूर है
0: ठीक है एफएम दो डॉक्टर साहब बुधाइन था छा खाइनो आ छा ना खाइनो आज डॉक्टर साहब आधे जो पहली सवाल हो टंग जो आई उन का पो आधे जो शुगर जो
1: अज बिल्कुल पहले टंग वाले सवाल जो सही नमूने से जवाब दी छो तो सवाल के मुख्य थोड़ा समझण कॉल आई तो मत वही रिसीव करे पो अवां सवाल जो जवाब दिया सही दिसो टंग में धक लगो ना हाने इन धक में थे तो हड्डी जो मसलो थे तो हड्डी जो मसलो थे तो समझो तोदी मेल तकलीफ थी तक डॉक्टर वेंदा हो तो मन सब गाल समझ में अची पवी यकदम ही बाकी जो धक लगे तो सुको पो जेमल सियारो अचे तो सी थे तो या मानू बादी वाली शे इस्तेमाल करे तो या उन अलावा वजन वाली शे खड़ी या घड़ो पंद वगैरह कंदो आ पो वही सूर ए तकलीफ महसूस थे थी तो इन जो मतलब यो है तो जो मांस है हड है रग है उन में जोर अची वो हड बचल बाकी जो मांस है गोश्त है मत चंब है रग है उन में धक आयल तो यह खबर ओदी मल थी पे हाँ अवं के एतो टाइम थी चुको है हड अवज सही है तो यह तकलीफ़ है तो थी सके अवं जो पे हड जो मसलो वह खत्म थी वो पर हाँ अवं से जो मसलो है ना ये हड जो मसलो को अवं मांस से मसलो है एक्सरे अवं वट पियल होजन तो वह भी खी अचो नो एक्सरे मुझे कराना पवन छो तो हाँ कंडीशन है वह या हवा से एक्सरे जो तुम कराए अचो तो ठीक है को मसलो को इशू को जिथा मर्जी कराए अचो पर डिजिटल होजेस या लोकल न हो तो वह कराईंदा तो उनमें ऐसे वासी जे ना कराए अचो अस अचो तो अस लिखी दींदी तुम कराए एक्सरे सामू इंदो ना तो सजी हकीकत सामू अची पवी अवं के करे तकलीफ छा सब शे उनमें अची पवी इलाज करण में दवाओं दे में तमाम बेहतरीन कम थी सके तो सही दिसो शुगर शुगर में सभी का पे अवी खबर आ मिठाण जो इस्तेमाल ना करो मिठाण जो इस्तेमाल

0: हे त केॾीमहिल तव्हां तबियत ख़ुशि रहंदी, केॾीमहिल तबियत थोरी ख़राबु ज़रूरु रहंदी, छो त जे दवा बीमारियुनि जे लाइ मिले पई उहा माठनि, जंहिंजे लाइ दवा न पई मिलनि त उहा गोड़ कंदियूं त ज़ाहिर ॻाल्हि तकलीफ़ थींदी। असांजी दवाउनि जो ख़र्च बि एतिरो ख़ासि कोन्हे को, आम जीअं डॉक्टर्स वठनि था ओतिरो ई असांजो नॉर्मल ख़र्चु आहे, घणा वॾा वॾा बिल असां न ठाहींदा आहियूं कंहिं पेशंट ते। अच्छा, ॿी ॻाल्हि बि हिकिड़ी ज़हन में रहे त टेस्टूं, रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दिलि जी पटी, इहा सभु शयूं बि आहिनि सही, पर पेशंट जी कंडीशन, हालात ॾिसी करे पोइ असांखे पेशंट खे लिखी ॾींदा आहियूं त इहो करायो। कुझु शयूं आहिनि जेका सम्झ में अची वई, ॻाल्हि क्लियर थी वई, पेशंट जी सभु शयूं सम्झी बीमारी ख़बर पइजी वियसि, त पोइ इन्हनि शयुनि जी ज़रूरत ई कान्हे का, सिर्फ़ु मेडिसन दवाउनि ते ई इलाज सां माण्हू तयारु करे सघे थो, पोइ हुननि जी ज़रूरत कान्हे का।
1: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: अदा केरु ॻाल्हाए पिया, किथां खां?
2: डॉक्टर दवा वठी
1: आयासीं,
2: सूरु थिए थो वरी मूंखे मैदे खां कोन्हे जेको मथां खां।
1: अच्छा,
2: हा दवा हाणे सुभाणे परीहं वरी वेंदासीं, फ़र्क़ु मतिलबु पेट ते गैस छॾे नथो, डॉक्टर खे चयो मां किकट कईमांसि।
1: अच्छा, तव्हां दवा छाजी वरिती अदा
2: जी?
1: दवा चेल जे सूर जी वरिती या गैस जी?
2: मूंखे दवा ॾिनी हफ़्ते जी।
1: छाजी दवा वरिती?
2: जी जी
1: जी अदा, तव्हां ॿुधायो पिए त गैस जी दवा वरिती या चेल जे सूर जी?
2: चेल में सूर हाणे थिए थो, वरी सुम्हूं था सुबुह उते।
1: अच्छा, चेल में सूर हाणे थियो आहे, ठीकु
2: आहे। जी जी हा
1: ठीकु आहे। दादा एफएम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था। डॉक्टर साहिबु हिननि तव्हां खां जेको आहे त गैस जी दवा वरिती ऐं चए थो ख़तमु थियण वारो आहे सुभाणे पर ईंदासीं, ऐं चेल में हाणे सूरु पवे थो। जी डॉक्टर
0: साईं, इहा त जेॾीमहिल मां ईंदा हो न पोइ ई सम्झ में थो त पहिरीं ॻाल्हि त इहा ज़हन में न रखिजो त मुंहिंजी दवाउनि जे करे मूंखे चेल में सूरु पवंदो, न इहा कॾहिं बि नथो थी सघे। असांजी जेका होम्योपैथिक दवाऊं आहिनि इन में असां बेफ़िक्र थी पेशंट जो इलाजु कंदा आहियूं, वॾी में वॾी बीमारी आहे, नंढी में नंढी बीमारी, छो त असांखे ख़बर आहे साइड इफेक्ट वारी का बि शइ कोन्हे, नुक़सान वारी का बि शइ कोन्हे को। ऐं जेको वॾा केस थींदा आहिनि न, जीअं कैंसर, टीबी, नमूनियो, शुगर, नासूर, गुर्दे में पथरी, पिते में पथरी, जिगर ते सोज, जिगर ते चर्बी, वॾा वॾा जेका केस थींदा आहिनि उन में असां मुख़्तोरी दवा ॾींदा आहियूं, ॿ ॾींहं, टे ॾींहं, चारि ॾींहं, उन में ॾिसंदो पेशंट जी कुझु हालात बहितर थियनि पिया त इलाजु कंदो। अवां परेशान न थियो, अव्हां पंहिंजो इलाजु मुकमल करायो, अलाह अव्हांखे ज़रूरु शिफ़ा ॾींदो।
1: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: बराए महिरबानी।
2: वालेकुम सलाम।
1: अदा केरु ॻाल्हाए पिया, किथां खां? हलो साईं, केरु ॻाल्हाए पिया, किथां खां? आवाज़ु कोन पियो अचे अव्हांजो। अदा वांजी कॉल डिस्कनेक्ट थी वई आहे, तव्हां नेटवर्क जी साइड बि कॉल करे सघो था। अजय डॉक्टर साहब,
0: साईं बिल्कुलु अवां कॉल नेटवर्क साहिबु वञी वरी कॉल कंदव, असां अवांजी कॉल ज़रूरु रिसीव कंदासूं। अदो आहे बिलाल कुंभर साहिबु, अवां वालेकुम असलाम, अदा तव्हांजे लाइ अलाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आमीन, अलाह पाक अव्हांखे बि ख़ुशि रखे, आबाद रखे, ऐं अव्हांजे जेको मैसेज हो असां प्रोग्राम में शामिलु करे वरितो। का सवाल हुजे त बीमारी जे हवाले सां मालूमात वठी सघोसि था। समिन प्रोग्राम में जेको बीमारी जे हवाले सां जेका कुझु शयूं हुयूं असांजूं, जेका गोश्त खाइण खां पोइ तकलीफ़ थिए, अव्हांखे कंहिं बि शइ जेका मां अॼु प्रोग्राम में अव्हांखे साम्हूं रखंदुसि, इन्हनि में का बि शइ महसूसु थिए, अव्हां मूं ॾे बि अची सघो था, या वेझो को डॉक्टर हुजे होॾां बि अव्हां वञी सघोसि था। त इन जे लाइ परेशान न थीजो, छो त मुंहिंजो ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त अव्हां अॻिते कंहिं वॾी बीमारी में या वॾी तकलीफ़ुनि में न पओ। उन शुरूआत में ई अव्हांखे सम्झ में अची वियो त अव्हां ओॾीमहिल ई हुनखे दवा वठी उते ई ब्रेक लॻाए छॾी, छो त हीउ गोश्त खाइण खां बाद में असांजा जेका माइदा आहिनि न उहे तमामु घणा कमज़ोर आहिनि, वॾे गोश्तनि बर्दाश्त नथा कनि, पोइ हाकत जो उल्टी, दिलि घबराइण, हा में सूर, हा में चक लॻनि, हा खां पुठे पासे माना आरो पार सूर थियणु, मथे खे चकर अचनि, ऐं महसूसु थिए त जिस्म घरो थियलु आहे, वज़न ई वज़न जिस्म थियलु आहे, कमु कार जो दिन न करे। ऐं सभिनी खां वॾे में वॾी ॻाल्हि त गोश्त खाधल आहे त हींअर गर्मियूं तमामु घणियूं आहिनि, त गर्मी जेका आहे थोरी का गर्मी में निकितासीं पघर जो जाम थियण, हीअ सभु शयूं छा आहिनि त असांजे जिस्म में गोश्त खाइण जे करे जेका गर्माइश थी वई आहे उन जे करे इहा सभु तकलीफ़ूं थियनि पियूं। इन्हनि में का बि तकलीफ़ महसूसु थिए वेझो को डॉक्टर आहे उन्हनि में वेझा असां आहियूं, असां वटि बि अची सघो। इहा बीमारी जी शुरूआति आहे, चवंदा आहियूं त मादे ते सोज, मादे ते गर्माइश, ऐं उन खां अलावा जेका मेन बीमारी थिए थी त उहा आहे त जिस्म में गर्माइश तमामु घणो थी वञनि, गोश्त जो

हाज़मो थियो ई कोन्हे को, हज़म थियो ई कोन्हे को, उन जे करे इहे सभु शयूं महसूसु थियनि पियूं। बहितर रहंदो अवां पहिरीं असां वटि डॉक्टरनि खां अचण खां बहितर रहंदो अवां कुझु पहिरीं कोशिश कयो, पाणी जो इस्तेमालु तमामु घणो कयो, जूस वग़ैरह जो इस्तेमालु कयो। ईअं बि न त गिलास ॿ गिलास या हिकिड़ी बोतल वरिती सॼी बोतल चाढ़े वरिती, ईअं न धुक पीती थोरो देरि सबर करे वरी थोरी पीती, वरी पाणी पीतो थोरो पाणी पीतो वरी थोरो पाणी पीतो। अहिड़े हिसाब सां इहा शो पंध उहा लाज़मी जेका अवां इस्तेमालु कयो पियो उनखे थोरो घटाए छॾियो। त इन सां छा थींदो त मैदे खे थोरो वक़फ़ो मिलंदो ऐं जेको गोश्त खाधल आहे उनखे हज़म करणु तेज़ करे छॾंदो। कंहिं वटि ॻोठनि में मूं ॾिठल आहे ॿुधल आहे त को फकियूं वग़ैरह ठाहींदा आहिनि या उहा फकियूं आहिनि त उहा इस्तेमालु करे सघो था, पर उनमें एहतियात सां। बाक़ी जेका दवा जी ज़रूरत पए त तव्हां अची सघो था, इलाजु पंहिंजो कराए सघोसि था। निमकोल आहे जे ब्लड प्रेशर कोन्हे को, शुगर कोन्हे को, त या निमकोल वग़ैरह बि अवां इस्तेमालु करे सघो था, जंहिंसां हाक जो उल्टी बंदि बि थी सघे थी। ऐं जे थी चुकी आहे त जिस्म मां जेको पाणी ऐं रत पाणी जेको निकितल आहे, निमकियात जेको निकितल आहे, उहा वरी भरिजी वेंदा। उन सां अव्हांजे मथे खे चकर वग़ैरह अचणु बंदि थी सघे थो, उल्टी बंदि थी सघे थो, हाक जो थियणु बंदि थी सघे थो। इलाज सां ई अवां इन जंहिंसां अव्हांखे कंहिं बि नंढो वार आहे वॾो आहे त उन्हनि खे का बि इहा तकलीफ़ महसूसु थिए, इलाजु ज़रूरु करायो। अच्छा, हिकिड़ी शइ बिल्कुलु यादि रखिजो,

0: हाणे दवा कान्हे का त हाणे सिहत कीअं आहे। इन खां पोइ ॿ ॾींहं में जेका आहे त असांखे इहा बि रिपोर्ट मिली पवंदी आहे त हाणे इहा सुर कोन्हे को, इहा तकलीफ़ थी पई आहे। त बसि शुरूआत हितां आहे, इन खे मारणो आहे, ही पंहिंजे पाण गुम थी पवे। त इहा कुझु होम्योपैथिक जा तरीक़ेकार इलाज आहिनि जेका ॿियनि वटि न आहिनि, असांजी होम्योपैथिक में आया आहिनि। त जंहिंजे करे असां इन खे जदीद बि चवंदा आहियूं, नओं बि चवंदा आहियूं, ऐं सुठे में सुठो इलाज तरीक़ेकार इलाज बि इन करे चवंदा आहियूं। ऐं इन में साइड इफेक्ट कोन्हे को, उहा बि उन जी मेन वजह इहा शइ आहे। त पेशेंट जी सॼी हिस्ट्री साम्हूं अची पवंदी आहे, पोइ सम्झ में ईंदी आहे त शुरू ई पहिरीं हीअ तकलीफ़ थी, उन खां पोइ हीअ थी, ऐं इन खां पोइ मां इलाज करायो, इहा गोरियूं खाधियूं, उन खां पोइ इहा तकलीफ़ थी, हाणे शुरूआत किथां हितां तां इलाज शुरू करणो। सॼी हक़ीक़त निकिरींदी, इलाज थींदो, दवाऊं खाईंदी मां आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे पाण मूंखे महसूसु थींदो त हाणे मूंखे सूर घटि वधा ऐं मां हाणे हलां पई, या मुंहिंजी जेका गोॾनि में सूर ख़त आहे अञा मुंहिंजे अंदर में जेका ॿी तकलीफ़ हुयूं उहा ख़तमु थी वियूं आहिनि, हाणे अञा गोॾनि जी सूर जी वारी आहे। चाहे त कुझु बीमारियूं, तकलीफ़ूं, मर्ज़, जरासीम, बैक्टेरिया, वायरस या दवाउनि जा जेका सरा अथनि उहा इलाज जेको कयो पिया न उनखे रोकण में वॾो हथु आहे, उन्हनि जो वॾो किरदारु आहे उन्हनि जो। मिसाल तौर ते जेको पेशेंट असां वटि हूंदा आहिनि पुराणा, अमां जी ॻाल्हि न पियो, ॿियनि जी ॻाल्हि कयां पियो, त पुराणा पेशेंट हूंदा आहिनि टीबी वारा, साई वारा, शुगर वारा, मादे में कैंसर वारा, अल्सर वारा, त उन्हनि में चाहे त इलाज वॾा इलाज थी चुका आहिनि, ऐं जेका उन्हनि जा डोज़ आहिनि, दवाऊं आहिनि, उहा जिस्म जे अंदरि मौजूदु आहिनि, जरासीम जिस्म जे अंदरि मौजूदु आहिनि। असां जेको कमु कयूं पिया असांजे कम खे रोकनि पिया, नथा निकिरनि ॾियनि, छो त वॾा आहिनि न, जीअं वॾा हूंदा आहिनि त वॾा उन्हनि खे नंढनि खे मारनि पिया, रोकनि पिया। त उन में असांजी होम्योपैथिक जेको इलाजु कंदी आहे उहा तमामु बहितरीनु इलाजु कंदी आहे, ॿियनि वटि इहा शइ कोन्हे असांजी होम्योपैथिक में आहे। पहिरीं अव्हांखे जेका टेबलेट्स मिलंदियूं, दवाऊं मिलंदियूं, त उन इन सभिनीनि खे सुम्हारे छॾींदो आहे, मटकियो असांखे पंहिंजो कमु करणु ॾियो, त उन्हनि जीअं सुम्हारे पोइ पंहिंजो इलाजु शुरू कंदा आहिनि त हर बीमारी पंहिंजे पाण ख़तमु थियणु शुरू थी पवंदी आहे। उन में कुझु बीमारी मर्ज़ जे करे, तकलीफ़ जे करे अची पवंदी आहे, कुझु खाधे पीते जे करे अची पवंदी आहे, कुझु इन्हनि ई वॾनि जे करे बि थियणु शुरू, जरासीमनि जे करे बि थियणु शुरू थी पवंदी आहे। त उहा जेॾीमहिल ख़तमु थी पवंदा आहिनि त बीमारी जो इलाजु थियणु शुरू थी पवंदो आहे।
1: जीअं ज़मीन अवां ॿुधो पिया, जीअं शुक्र नवाब शाह FM 90.8 जे लाइ स्टूडियो में प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण, ऐं मां अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाड़ी, मूंसां गॾु सकरनि जा मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब। समिन असां हमेशह मूंखे चवंदा आहियूं त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, ऐं पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो बि ख़्यालु रखंदा कयो। समिन बीमारियूं इंसान जे जिस्म में अची वेंदियूं आहिनि, इलाज खां एहतियात बहितर आहे, ऐं एहतियात करण सां बीमारियूं भॼी वेंदियूं आहिनि। कोशिशि कयो त बीमारियुनि खे अचण ई न ॾियो, एहतियात कयो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखो, जीअं तव्हां कंहिं बीमारी में मुबतला न थियो। बिलफर्ज़ का बीमारी थी थी वञे, का तकलीफ़ अची थी वञे, त हुन जो तुर्त इलाज कराए हुनखे पंहिंजे जिस्म मां कढाए भॼाए छॾियो। असां पोइ इलाज करायो होम्योपैथिक वसीले सां, जंहिंमें कोई साइड इफेक्ट न आयो हूंदो। जीअं ज़मीन मां वटि ॿुधाईंदो हलां, डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहबु होम्योपैथिक जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि, ख़ानदानी डॉक्टर हाजी इनायतुल्ला राजपूत साहबु जिन जा पोटा आहिनि। डॉक्टर साहबु होम्योपैथिक जा लेक्चरर पिणु आहिनि नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में डॉक्टर साहबु मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि। जुमे वारे ॾींहुं सुबुह जो 9 खां मंझंदि 12 वॻे ताईं। समिन होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट न आहे, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां बीमारियुनि खे जड़ खां ख़तमु कयो वेंदो आहे। समिन डॉक्टर साहब पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी असां वटि FM ते ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब जिन जी महिरबानी आहे, अवां बज़रिए कॉल डॉक्टर साहब खां सवालु कंदा आहियो, ऐं डॉक्टर साहब उन जो अव्हांखे जवाबु ॾींदा आहिनि। कहिड़े बि क़िस्म जो सवालु हुजे, बीमारी जे हवाले सां ॼाण वठणी हुजे, मालूमात वठणी हुजे, तव्हां डॉक्टर साहब ॾे लाइव कॉल करे सघो था। मां उनखे नंबर नोट कराईंदो थो हलां, त डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे 02279984763 2327898476 3। इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे, लाइव कॉल ज़रिए तव्हां डॉक्टर साहब खां सवालु पुछी सघो था। डॉक्टर साहब मां अव्हां सां गॾु मौजूदु हूंदासीं पूरे नवे वगे ताणी। जी असमिन मावा के बुधाइंदो ला डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन के इलाज किया वे तो। डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था कड़े सगर मौजूद है किथा का अस्सलाम वालेकुम अदा केर गल किथा का अच्छा मगज तो चक्कर अचंदा ठीक है मुझा भा अवा एफ एम बुध डॉक्टर साहब अवा के बुधाइन था जी डॉक्टर साहब अदे जो सवाल है
0: साई अवा के जी का गरमाइश थी चुकी है दिसो गरमाइश जो इलाज वसीले सा ही कुछ थी सके तो अवा इलाज करायो होम्योपैथिक जो अच्छा होम्योपैथिक जो इलाज करण सा अवा के छा फायदो मिलन दो अवा छो कराइंदा अच्छा ये शेप ज़हन में रहो पर एक कॉल रिसीव करे वो अवा जे सवाल जो जवाब जो दिलचस्प अवा जो सवाल है
1: डॉक्टर साहब कॉल वठो था अस्सलाम वालेकुम
2: सर वालेकुम अस्सलाम
1: अदा केर गलाए पे किथा का
2: सर मैं सुजात गवाला है अम्मानो खान जो मालिक है
1: अजी मुजा बात छा सवाल है जो डॉक्टर साहब ला
2: ये मेरे वालिद साहब के सर पास में सूर रहा दुआ बिल्कुल न छड़ी जा की काफी दवाई देर की आज पे कोई के सूर नहीं छड़ी
1: अच्छा पास में किथे आगे आगे पास पुठे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह करायो आ मेरे वालिद साहब जो
2: पास में
1: अदा रेडियो सेट जो आवाज़ बंद कर दिसो आवाज़ रिपीट थे पे असि मशीन जो है कॉल डिस्कनेक्ट कर छी थी इनके करे बराए मेहरबानी जैसे मेल अस एफ एम लाइव गाला कर तो रेडियो सेट जो आवाज़ बंद कदा कर तवे वाल साहब के पास में सूर है केतरो टाइम थे केतरो टाइम थे अदा
2: काफी टाइम
1: अच्छा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया उनमें पथरी वगैरह या का
2: शल्ट्रासाउंड कराया
1: अच्छा अल्ट्रासाउंड मतलब इलाज करायो ही ना है
2: जी इलाज तो करायो वा लेकिन दवाई लई वर्तिया सूर न छडिनो बाम डॉक्टर काफी दिना ने
1: अच्छा भा दिसो पासे में सूर अंदर हाण अंदर केडे डॉक्टर के केडी खबर छ सूर आ तने जला बेहतर आ त अल्ट्रासाउंड करायो पंज वाल साहब जो वो डॉक्टर साहब हल्या जो अगर पथरी आ है कचरो आ है या बियो को मसलो आ है का सो जाए त अल्लाह जो हुकुम सा होम्योपैथिक तरीका इलाज सा खत्म थी सके तो वधिक त एफएम दो डॉक्टर साहब बुधाइंदा अजी डॉक्टर साहब
0: इन सवाल का पहले बेहतर रहो जो असो लास्ट कॉलर हो उन तरफ हल्दी
1: उनको
0: सवाल हो तो मादे में गरमाइश के हवाले से साई दिसो मादे में गरमाइश जो है ना उनमें इलाज होम्योपैथिक छो करायो हाँ यो छो वाला जो सवाल हो ना यो असंगे दादो दंग तो करे साई दिसो होम्योपैथिक में हर मर्ज में बीमारिया में अलग अलग दवाओं मौजूद हैं ऐं हर दवा पंहिंजो कमु ऐं किरदारु करण में 100% आहिनि 100% थींदियूं तॾहिं ई उहा होम्योपैथिक जी किताबनि में होम्योपैथिक जे डॉक्टरनि वटि स्टोरनि वटि कंपनीअ में ठहण जी इजाज़त मिलंदी त इन करे त होम्योपैथिक जी दवा में ॾिसो हाणे मादे में गरमाइश खाधे पीते जे करे थी आहे त अलॻि मेडिसन हर शइ जे लाइ अलॻि अलॻि मेडिसन जंहिंसां इलाज करण में बहितरी आसानी थींदी
1: डॉक्टर साहब आख़िरी कॉल वठूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि किथां खां अस्सलाम वालेकुम साईं दुआऊं अलाह जा एहसान केरु ॻाल्हाए पियो मुंहिंजो भाउ ऐं किथां खां अली गुल जलवाणी नवाब शाह खां जी मुंहिंजा भाउ छा सवाल आहे डॉक्टर साहब लाइ अच्छा साॼे पासे सूरु आहे या खाॿे पासे
2: ॿिन्ही पासे माना पासीरियूं आहिनि हेठां माना वेहां थो सूर थो थिए ॿई पासा पासीरियूं आहिनि
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहबु ॿुधाइनि था अजी डॉक्टर साहबु
0: साईं इन सवाल जो जवाबु ईअं आहे त पेट ते भर्ती आहे उन जे करे इहा तकलीफ़ थिए थी हा में साड़ो जलन उन जे करे इहा तकलीफ़ थिए थी इन में परेशान थियण जी का बि ज़रूरत कोन्हे का सिर्फ़ु इलाज करायो इनशाला इहा सूर ख़तमु थी पवंदा ऐं बादी जेको आहे त बादी वारी शयूं तरल शयूं मिर्च मसाला देग वारी जेका शयूं उहा इस्तेमालु बंदि करे छॾियो पाणी जूस कमनि जो रस कची लस्सी निमकोल कैल्सी वग़ैरह फंटा बोतल जूस वग़ैरह इहे सभु शयूं इस्तेमालु करणु शुरू कयो भाॼीअ में कोशिशि कयो त साई भाॼी जी तरफ़ तव्हां घणो इस्तेमालु कयो त जंहिंसां इहा तकलीफ़ूं अवां जी ख़तमु थियणु शुरू थी पवंदियूं। वधीक जेको इलाजु करण जो सोचियो त भले अवां होम्योपैथिक इलाजु कराए सघोसि था। ऐं साईं हिकिड़ो लास्ट कॉलर जेको असांजो बाबे खे पासे में सूरु आहे, साईं पासो पेट में जाम आहिनि, कुर्दा जिगर तिली माइदो पितो आंड्रा मसानो पेशाब जे मथां गुदूद, हाणे इन में कहिड़ी शइ में छाजे करे सूरु थिए पियो, उहा सभु शइ ॾिसी करे पोइ मां वधीक इलाजु करे सघां थो। बहितरु रहंदो या तव्हां अची वञो त जंहिंसां इलाजु तव्हांजो सही नमूने सां थी सघे।
1: डॉक्टर साहब अवां जो पैगाम छा हूंदो असांजे सामाइन जे
0: लाइ? सामाइन जे लाइ पैगाम इहो ई हूंदो, अॼु जो प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां। अॼु त प्रोग्राम जो टाइम थी चुको आहे ख़तमु, जेका कॉलर्स हूंदा जेका असां कॉल न करे सघासीं त उन सभिनी खे चवंदासीं प्रोग्राम खां बाद में मूंसां राब्तो करे सघनि था। वधीक इहो बहितरु रहंदो अवां जेको आहे त मूंखे सुभाणे क्लिनिक ते मिली सघो था, सुबुह 9 खां वठी शाम जो 6 वॻे ताणी अची उते वधीक कचहरी मालूमात मशवरो हर शइ इलाजु कराए सघोसि था। त जेका शइ असां शामिलु करे सघासीं अॼु के प्रोग्राम में, छो त टाइम ख़तमु थी चुको आहे तव्हांजो प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक में, त फ़िलहाल जे लाइ एतिरी कालूं मैसेज असां खणी सघासीं। बाक़ी हंधि खां माज़रत, जेका एमरजेंसी आहे या का शइ वधीक मालूमाती करणी आहे तव्हां प्रोग्राम खां पोइ बि कॉल करे सघोसि था। अॼु के प्रोग्राम में जेको पैगाम मां अव्हां खे इहो ई ॾींदुसि त होम्योपैथिक में इलाज कराइण जो फ़ाइदो तमामु बहितरीन आहे। हुन में छा आहे त असां वटि मेडिसन्स अलॻि अलॻि खोले करे ॻाल्हि मां सम्झायां त ईअं त होम्योपैथिक में जेका असां जेको इलाजु कंदा आहियूं सिंगल रेमेडी कुझु सिरप्स जीअं ख़ासि करे पेशंट जेका मुंहिंजा आहिनि उन्हनि ख़बर हूंदी त असां डिस्केट्स ॾींदा आहियूं, गोरियूं ॾींदा आहियूं चूसण जे हवाले सां, कुझु ड्राफ्ट्स ॾींदा आहियूं पाणी मिलाइण लाइ, पोइ सिरप विरप अलॻि शयूं हुननि खे कयो साइड में, जेका अलॻि अलॻि गोरियूं ॾींदा आहियूं न, सुबुह खणी आहे को ॾींहं में ॿ दफ़ा, को ॾींहं में टे दफ़ा खणियूं आहिनि, को ॾींहं में हिकु दफ़ा खणी आहे, इन्हनि में जेका मेडिसन्स आहिनि न उहा ई मेडिसन कमाल जी आहिनि तव्हांजे लाइ अव्हांजी बीमारी जे ख़तमु करण जे लाइ। हिन में छा आहे त मिसाल हिकिड़ी मिसाल ॾेई पोइ प्रोग्राम जे लाइ आख़िरी में इजाज़त वठंदुसि। गोॾे में सूरु आहे हिकिड़ी शइ जंहिंसां अव्हां सम्झी सघो था त हाणे असांजी दवाउनि जो सोच जेका होम्योपैथिक जी ईजाद कई हुनजी सोच केतिरी हाई लेवल ते हुई। हुन छा कयईं त गोॾे में सूर जे लाइ बेन वटि छा आहे त सूर जे लाइ सुई आहे या सूर जे लाइ गोरी आहे या सूर जे लाइ को मरम आहे ट्यूब आहे को तेल आहे लॻाइण जे लाइ, बसि असांजा जेका होम्योपैथिक ईजाद करण वारो हुन चयो न इहा शइ छो छाला छो ॾींहुं बाबा न पेशंट चवे छा थो सूरु आहे केॾी महिल हलण महिल वेहण महिल या धक लॻो अंदरां का रग में सूरु आहे मांस में सूरु आहे लुब्रिकेंट ख़तमु थी वियो आहे या कैटिलेज डैमेज थी चुका आहिनि कैल्शियम जी कमी आहे, त इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जूं अलॻि अलॻि मां दवाऊं ॾींदुसि। त सूरु जे वारे पेशंट आहिनि त उन्हनि खे सिर्फ़ु सूरु जी दवा मिले, सभई दवाऊं मिक्स न मिलनि, त इन करे होम्योपैथी जंहिं ईजाद कई उन हिकिड़ी बीमारी जे अलॻि अलॻि अलामतूं अलॻि अलॻि तकलीफ़ूं उन्हनि खे सभिनी खे धार धार करे उन खां बाद में उन्हनि जी जेका दवाऊं आहिनि उहा सभई धार धार करे असांखे अलॻि पने ते लिखी ॾिनियूं किताब में, जेके असां चवंदा आहियूं मेटेरिया मेडिका। उन में अलॻि अलॻि हिकिड़ी बीमारी जी तकलीफ़ हिकिड़ो ॿ मरीज़नि, हिकिड़े खे हलणु महिल सूरु थिए पियो, हिकिड़े खे वेहण महिल सूरु थिए पियो, हिकिड़े खे आहे त जेको हलणु महिल सूरु आहे त उहो हले पियो सूरु आहे वेठो आहे सूरु कोन्हे को, हिकिड़ो आहे त उहो वेठो आहे त सूरु आहे हले पियो त सूरु कोन्हे, माना ॿई हिकिड़े ॿिए खां अपोज़िट आहिनि, माना हू अलॻि आहे त हू अलॻि आहे, सूरु हिकिड़ो ई आहे गोॾे में, त उन जी दवा असां वटि अलॻि आहे, उन जी दवा अलॻि आहे। ॿियनि वटि छा आहे त ॿिन्हिनि खे हिकिड़ी दवा आहे, सूर जी लाइ दवा क्रीम गोरियूं हिकिड़ी आहे, असां वटि अलॻि आहिनि। त इन ॿुधाइण जो मक़सदु छा आहे त असांजी जदीद आहे, उनखे सुठे नमूने सां सम्झी करे सुठी दवाऊं जेका आहिनि पेशंट खे खपनि थियूं उहा दवाऊं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक में ही आहे। त इन करे होम्योपैथिक जेको इलाजु आहे त उहो अव्हांजे लाइ हिकटिक आहे, तंहिंजे करे अव्हांखे चवंदो आहियां त होम्योपैथिक इलाजु करायो, जेका तकलीफ़ आहे उहा ई दवा मिले, उन ई दवा सां अव्हां सेहतियाब थी चुको। सामिन प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी चुको आहे, वधीक इन बारे में मां ॿिए प्रोग्राम में अव्हांखे सम्झाईंदुसि, फ़िलहालु मूंखे ॾियो इजाज़त, अलाह जी महिरबानी।
1: जी हा सामिन, मूंसां गॾु हुआ सकरनि जा मशहूरु ऐं मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह से वाबस्त हैं। डॉक्टर साहब माहिर अमराज, नक कन गलू, पुरानो नज़लो निचू, जोड़न जो सूर, मथे जो सूर, माथे जी अल्सर, माथे जलन, तिरी जो वधण, जिगर जा मर्ज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज खंग टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फुरणियूं बारन में कद जो न वधण मर्दन तणे औरतन में वजन जो न वधण इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि जुमो सुबुह जो 9 खां मंझंदि 12 वॻे ते डॉक्टर साहब मौजूदु हूंदा ऐं डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर 0327-99-84-763 8 9 8 4 7 6 3 जी समय यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे क्लिनिक ते भी यही नंबर मौजूद होंदो आहे एफएम ते लाइव कॉल दौरान भी यही नंबर मौजूद होंदो आहे सामिन वक्त जो एहसास प्रोग्राम सेहत जी गाल सेहत जो राज होम्योपैथिक सां जो भी वक्त पुजे तो मैंने पुजानी थे जडे भी दुआलायत खणो पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगानी के दुआउन में ज़रूर याद रखजो ज़िंदगी अगर साथ ॾिनो त मां ॿिए प्रोग्राम में हूंदसि अवां सां गॾु तेसीं मूंखे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु अलाह वाही अल निगहबान जेॾां पेर तेॾां ख़ैरु ख़ैर
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी में वाद बाबत फैसलो न कर सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से दावा। व्हाइट हाउस पारा चो तो ईरान से मुहदो अमरीकी मुफादन ए ट्रंप की शर्तन तहत ही मुमकिन है। इन खा अग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर हो। सदर ट्रंप बिया मकसद हासिल करने में सरगरम है। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म ना है कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार मोहसन रजाई जो ट्रंप के यू टर्न से रद्द अमल। मोहसन रजाई अमरीकी सदर सफातकारी दौरान टों भेरों धोखो दई रो है। अमरीका तरफा गाल में हद का मुतालबा क्या पाया वन। ट्रंप के अमल साबित कर छोड़ो तो गाल में संजीदा ना है।

गंबट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान जे वारिसन जो एहतजाज, वारिसन जो चवण आए त नसीम टैक्सी हलाए बचड़न जो पेट पालीदो हो, पुलिस के जुड़तू मुकाबलो में कतल कयो, मकतूल नौजवान जी न्याणी रोईंदे एहतजाज कयो त पुलिस बाबा के बेगुनाह कतल कयो, वारिसन पारां मुलविस अहलकारनि खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। कराची जिना अस्पताल में औरत पारां वॉशरूम में मार ॾियण वारे वाक़िए जी जांच लाइ कमेटी क़ाइमु, जांच टीम वाक़िए जी जांच सूमर ताईं मुकमल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत खे पेश कंदी। जिना अस्पताल में डॉक्टर जी मुबैना गफ़लत सबब औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॾियण बाबति वीडियो वायरल थी हुई। पोरीअ जो मुबैना कातिल वडेरो पुलिस जी पकड़ खां आजो, नव ॾींहं अॻु वडेरे जे पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल मेमण खे मुहैया तौर जे गोलियूं हणी क़तल कयो हो। पुलिस बंगारोपण जी वाक़िए जो इतफ़ाक़ी केस दाख़िल करे छॾियो हो। ज़रियनि मूजिबि बासर मक़तूल जे वारिसनि खे धमकियूं ॾेई मीडिया आॾो अचण खां बि रोके रहिया आहिनि। लाड़काणे में हफ़्तो अॻु कबूतर पकड़े न ॾियण वारे मामले ते वेशियाणे तशदुद जो निशानो बणायल नींगर चाणका अस्पताल में दम ॾेई छॾियो। 13 वरियनि जे नींगर हसनैन रज़ा खे 22 मई ते विरोही बिरादरी जे माण्हुनि कबूतर पकड़े न ॾियण तां मुबैना तौर सख़्त तशदुद जो निशानो बणायो हो। चाणका अस्पताल में हिकु हफ़्ते खां दाख़िल नींगर अॼु दम ॾेई छॾियो। नींगर जे वालिद सईद भुट्टो मुतालबो कयो आहे त पुट मथां वेशियाणो तशदुद कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ क़तल केस दाख़िल करे खेनि फौरी गिरफ़्तार कयो वञे। करोड़े रुपया करप्शन केस में एंटी करप्शन सिंध जी अदालत अॻूणे आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 जवाबदारनि खे तलब करे वरितो। आईजी समेत अॻूणे डीआईजी फैसल बशीर मेमण, अॻूणे एसएसपी तनवीर अहमद ताहिर ऐं ॿियनि ते पुलिस मुलाज़मनि जी पघारनि में गैर कानूनी कटौती ऐं अख़्तियारनि जे नाजाइज़ इस्तेमाल जो इल्ज़ाम आहे। अदालत सभिनी जवाबदारनि खे 9 जून ते ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। हैदराबाद जे हाली रोड थाणे जी हद में घरू तकरार तां जवाबदारनि हथां सोट कतल। नुसरत कॉलोनी में जवाबदारनि घर में घिड़ी असद यूसुफ ज़ई खे गोलियुनि जो खाज बणायो। फायरिंग में नौजवान शाज़ेब यूसुफ ज़ई ज़ख़्मी। इलाइक़े में चिकताण धुरियन में हिकु हफ़्तो अॻु बि झेड़ो थियो हो। कराची में कुतनि जो आज़ार, रेबीज़ सबबि वधीक किनीगर फौत। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि न्यू कराची वासी 14 वरियनि जो अली फहद इलाज दौरान फौत थी वियो। निंगर खे कुझु वक़्त अॻु कुते दाड़े ज़ख़्मी कयो हो। हलंदड़ साल कराची में रेबीज़ जा 25,000 खां वधीक केसिस रिपोर्ट थिया। कुतनि जे डाड़नि सबबि 10 शहरी फौत थी चुका। मैचेस ते बतल वनडे